ओमेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार दिनांक 27 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। वंदना कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये मातृ वंदना गीत।

ना चाहूँ मैं हीरे मोती ना ही चांदी सोना, मैं तो चाहूँ बस प्रभु तेरे चरणों में एक कोना। ये भावना जब भक्त के मन में आ जाती है तो भक्त ये कामना करता है कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं आपके सिवा जीवन में कुछ नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे आपकी शरण मिले, पल पल मैं आपके पास रहूँ और आपसे अपलक दृष्टि मेरी होने के चलते ध्यान मेरा कभी ना हटे। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें फकीरी की तरह भगवान की भक्ति में भक्त का मन लग जाता है। संजीव अभ्यंकर के स्वर में सुनते हैं ये भक्ति गीत।

व्यक्ति का मन जब भगवान की भक्ति में रम जाता है और वो फकीरी की तरह सिर्फ और सिर्फ भगवान की यादों में खो जाता है, उनका स्मरण करने लगता है, उसके सिवा जीवन में कुछ और चिंतन करना जब शेष नहीं रह जाता, तब भक्त की यह कामना उस मीराबाई की तरह हो जाती है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबकर अपना सर्वस्व समर्पण कर सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाना चाहती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही भक्ति गीत जिसमें भक्त कामना करता है कि मैंने प्रभु आपको पा लिया है, मैं सिर्फ आपको पाने का जतन कर रहा हूं, क्या अब मेरे जीवन में और कोई कामना है? नहीं। सुनते हैं कुछ ऐसा ही भक्ति से सरोवर यह गीत रेखा भारद्वाज के स्वर में।

श्रोता आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और इसमें आप सुन रहे हैं उन भक्ति गीतों को जो जीवन जीने की न केवल प्रेरणा देते हैं वरन जीवन को ईश्वर भक्ति में जुड़ने की नई प्रेरणा भी हम सबको देते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही भक्ति गीत जिसमें छम छम बाजे के स्वर के साथ, घुंघरुओं की ताल के साथ, भक्ति की राग के साथ भक्त भगवान की भक्ति की कामना करता है।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। समय हुआ है चिंतन का। आज आप सुनिए हंसी का दर्शन पर चिंतन। आलेख डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त का है और वाचन स्वर सुनील केशव देवधर का।

सद्गुणों के सुरभित वृक्ष लगा देता है, जिससे हमारी जीवन यात्रा एक पर्वोत्सव बन जाती है। हंसी के इन सभी आधारों को परखा जाए तो क्या नगीची के विचारशील मन में इन्हीं की छवियां मौजूद थीं? कतई नहीं, वो तो उस हंसी का दीवाना था।

वहां उलझनों के झाड़ झंखाड़, तनावों के मरुस्थल और अभावों के उजाड़ ठहर नहीं सकती। सारी निराशाओं के पतझड़ चाहे जितनी गांठों के पुंज बना ले, कुंठा और मनोरोगों के तुषार चाहे जितनी वर्षा करें, पर आत्मिक हंसी की सरिता जब आनंद का जल सिंचन करती है तो जिंदगी की हर बगिया हरी भरी हो जाती है। यौवन का वसंत खिल पड़ता।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हंसी का दर्शन पर चिंतन। आलेख डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त का था और वाचन सुनील केशव देवधर का। समय हुआ है श्री रामचरितमानस के गायन पाठ का। आइए सुनते हैं ए हरिहरन के स्वर में श्री रामचरितमानस का गायन पाठ।
1: महोत्सव देखा किंतु फिर भी मोह नहीं मिटा।

श्रोता आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन पाठ ए हरिहरन के स्वर में एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं, समय हुआ है कृषि सामयिकी का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए फल पौधों की कटाई और छटाई विषय पर जानकारी। ये उपयोगी जानकारी दे रहे हैं श्री आर एन एस वन फेज।

पौधों में या जो शोभाकारी पौधों हैं उसमें कटाई और छटाई बहुत आवश्यक होता है। उसमें हम कटाई और छटाई करेंगे तो पौधे अच्छे स्वस्थ रहेंगे, सुंदर दिखेंगे और बड़े ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे। कटाई छटाई करने का एक सिद्धांत होता है। सिद्धांत ये होता है कि जो शाखा एक दूसरे शाखा से रगड़ खा रहा है या वह शाखा जो पौधों को सही सूर्य के प्रकाश आने में दिक्कत दे रहा है, वह उस पौधे के सुसुप्ता अवस्था के अवस्था में उस शाखा का कटाई करना चाहिए। और छटाई जो छोटे छोटे शाखाएं हैं उनको अलग करेंगे तो उससे फायदा होगा। पौधे से फल पूरे टूट जाते हैं और पौधों में फूल भी नहीं लगा है, फूल आने

0: पौधों का जो आकार है, प्रकार है, कटाई छटाई के बाद में सुसुप्त अवस्था में बना रहेगा, और जैसे ही उसमें हम खाद पानी और उर्वरक देंगे तो पौधे का आकार प्रकार के साथ साथ फूल भी ज़्यादा आएगा और उसमें फल भी अच्छे गुणवत्ता के आएंगे। किसान भाई साधारणतः क्या करते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कुल्हाड़ी से ही कटाई कर देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी फल पौधों का या शोभाकारी पौधों का कटाई या छटाई कुल्हाड़ी से ना करें। ज़्यादा अच्छा होगा जो आरी होता है आरी से कटाई करें, या जो एक सिकेटियर बोलते हैं कैंची आता है जिससे पौधों की शाखाओं को काटकर उसको सही रूप और सही दिशा दिया जाता है, उससे कटाई छटाई करें। जिस भाग को आपने कटाई छटाई किया है उस भाग में कोई भी फफूंद नाशक दवा, चाहे वो बोर्डेक्स पेस्ट बना के आपने रखा हो या बोर्डेक्स मिक्सचर बना के रखा हो या डाइथेन 45 का घोल रखा हो, उस कटे हुए भाग में ज़रूर से लगाएं। सामान्यतः किसान भाई कटाई छटाई करने के बाद में यदि इस प्रकार के फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसी अवस्था में वह पेड़ जहां पर कटाई किया है वहां पे विभिन्न प्रकार के बीमारियों का प्रवेश होता है, और हो सकता है आपने जहां से कटाई किया है उसके नीचे से वो सड़ने लग जाए या बीमारी लगने लग जाए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है, हमने कटाई छटाई करने के बाद ये भी देखें कि यदि उस शाखा पर कहीं कीड़े ने छेद कर दिया है या कीड़े ने उसमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की अवस्था में तक ले गया है, ऐसी अवस्था में आप उस कीड़े लगे हुए जगह पर अगर आप मुख्य तना पे है तो उसमें आप केरोसिन या मिट्टी का तेल वाला फोहे लगाकर उसके जो छेद है जिसमें कीड़ा घुसा हुआ है उसके अंदर डाल के उसको गीली मिट्टी से ढक के रख दें, तो उसमें क्या होगा, आपके कटाई छटाई का सही फायदा उस पेड़ को मिलेगा। क्योंकि जो पौधे को नुकसान उस कीड़े ने किया है, उस कीड़े के नुकसान आपके ट्रेनिंग पुनिंग करने के बाद में जो फलवार होने वाला है, जो पौधों में ज़्यादा फूल और फल लगने वाला है, उसके लिए फायदा होगा। तो ये जो खास छोटी छोटी बातें हैं मगर महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको अगर किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो ये मान के चलें कि उनकी कटाई छटाई के साथ में सही ज़्यादा मात्रा में फूल आएगा, फूल आने के साथ साथ अच्छे किस्म के फल लगेंगे और उसमें लगने वाले फल जो है उसका गुणवत्ता काफ़ी अच्छा रहेगा।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी में फल पौधों की कटाई एवं छटाई विषय पर उपयोगी जानकारी दे रहे थे RNS वानफे। एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा आज प्रसारित होने वाली हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 7 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:05 का समय रहेगा लघु वार्ता का। आज का विषय है जल संरक्षण। प्रादेशिक समाचारों का लेखा जोखा आप सुनेंगे 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, इसे हम अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर सुनिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम। 7:45 का समय रहेगा हमारे प्रातःकालीन सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का।

हैं सुबह 10 बजे और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इसे हम अनुप्रसारित करते हैं। सुगम संगीत में आज कलाकार होंगे राम शंकर और साथी, और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर।

0: श्रोताओं, 12:25 पर आप सुनेंगे कुछ संदेश। 12:30 का समय रहेगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम का, और 12:01 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम जो आज ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति रहेगा। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। हमारी सायंकालीन सभा सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसमें सबसे पहले सायंकाल 5 युवा श्रोता सुनेंगे अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। युववाणी में आज आप सुनेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ गीत संगीत, कुछ मनोरंजनात्मक सूचनाएं और गीत संगीत। ये ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति रहेगी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम 6:30 पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:21 पर चौपाल सुनिएगा, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, अधिक उत्पादन हेतु भूमि का सुधार कैसे करें, इस विषय पर वार्ता होगी जगदीश चंद्र गुप्ता से, और इनसे भेंट करता होंगे श्री एस चौधरी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम रात्रि 8 और रात्रि 9 हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज प्रसारित होने वाली सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM एंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तरजालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु 6 एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र BSF सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए, और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी।

0: आस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मन्त्रिणा पेनी वोंगः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत आस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17तमस्य विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं द्वादश देशानाम् अभियान प्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों

0: सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। समय हुआ है लघु वार्ता का। आज का विषय है जल संरक्षण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्रोताओं, ये पंक्तियां बताती हैं कि हमारे मनीषी, हमारे चिंतक, हमारे विद्वानों ने आज नहीं सदियों पहले ये चिंता हम सबके बीच चिंतन करने छोड़ दी थी कि हम पानी को सहेजें, जल को सहेज कर रखें। क्योंकि यदि हमने पानी को नहीं सहेजा, जल को सहेज कर नहीं रखा, तो वह दिन दूर नहीं जब हमें अपनी नई पीढ़ी को सुखद भविष्य देने के प्रति हम उन्हें अंधकारमय जीवन देने का अनायास प्रयत्न करेंगे। और ये जारी भी है। एक समय था जब शिवपुरी के पुरानी शिवपुरी सहित कई क्षेत्रों में हैंडपंप लगे थे और वो हैंडपंप को फेंकू पंप भी कहा जाता था, जो एक हत्थे से हाथ से पाइप खींचा वैसे ही वह हत्या पानी की झार लगा देता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि जहां 20-30 फुट पर पानी दो दशक पहले था, वहां आज 800 और 1000 फुट की गहराई पर भी पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि लगातार हमने पानी का अपव्यय किया, व्यर्थ जल बहाया। नतीजा यह रहा कि आज हम पानी को बचाने का संकल्प दे रहे हैं और यदि हमने इस पहल से सीख नहीं ली, इससे हम जागरूक नहीं हुए, हमारे आसपास के लोगों में पानी बचाने के प्रति चेतना नहीं आई, तो सोचिएगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। हाल ही में गंगा दशहरा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पानी को बचाने की शपथ दिलाई। इसलिए नहीं कि शिवपुरी में बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत है, वरन इसलिए कि हम पुराने प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित करने की पहल करेंगे तो इससे अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे। और जिस सिद्धेश्वर टेकरी के पास बनी झील में, अर्थात बावड़ी में, जिसे गोरखनाथ बावड़ी भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ मंदिर जो बना हुआ है उसके पास बनी हुई है। और इस बावड़ी के कायाकल्प के साथ जब इसका संरक्षण हुआ तो तय हो गया था कि निश्चित रूप से इस बावड़ी का संरक्षण होगा। तो इससे हम नसीहत लें कि इस तरह की प्राकृतिक धरोहर जो हमारे ज़िले में हैं, जो हमारे आसपास में हैं, हम उनको संरक्षित सुरक्षित रखने की पहल करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति सहेजने के प्रति, जल को सहेजने के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। इसीलिए सरकार पानी बचाओ अभियान भी चलाती है, और लगातार जो हम वृक्षों को काट करके अपनी भौतिक सुविधाओं को जुटाने का जतन कर रहे हैं, एक कारण प्रकृति के असंतुलन का यह भी है। हम करेंगे उतने अधिक हमें वातावरण में बारिश के संकेत मिलेंगे, और जितना हम पौधों को क्षति पहुंचाएंगे उतनी अधिक पानी की परेशानियां हमें नहीं गवाएंगे। हम उतना ही पानी उपयोग करेंगे जितनी हमें आवश्यकता है, तभी जल संरक्षित हो सकेगा। श्रोता

0: खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा है कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योगासन देश की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है और विश्व भर में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का एक माध्यम बनकर उभरा है।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 मई तक 2,39,00,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हुआ ये काम 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाकर HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन बन गया है। जनता की सहभागिता से जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। डॉ. यादव कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में मां शिप्रा को 351 फीट की चुनरी अर्पित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड ने रामघाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ अंतरजली यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी की घाट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
2: जल संरक्षण के काम कर रहे हैं और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है।
0: पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जलवायु अनुकूल शहरी विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 मई को भोपाल के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान एप्को परिसर में किया जाएगा। सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के संबंध में विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भारत भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। वीर भारत न्यास द्वारा जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर केंद्रित ये गरिमामय आयोजन 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। इस 7 दिवसीय समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित विभिन्न वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में कल मत

प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में महिला रोजगार, कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए नियम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक आईटी ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। आईटी ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्य प्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89 परिवारों में से अब तक 48 परिवारों को दो चरणों में 24-24 परिवारों के समूह के रूप में सफलतापूर्वक नवीन आवासीय कॉलोनी में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि शेष 41 परिवारों का पुनर्वास आगामी 3 माह में पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आईपीएल प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके पूर्व कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने कल पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबुआ में संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने ग्रामीण क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 29 नमूने जांच के लिए लिए हैं। आगर मालवा में कल आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने ईद और मुहर्रम पर्व शांति सौहार्द से मनाने की अपील की है। भोपाल में संभावित हवाई हमले और बड़े आपदा हालात से निपटने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में मॉक ड्रिल की गई। शिवपुरी में आज शासकीय आईटीआई झांसी रोड में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत की शुरुआत में आइए सुनते हैं असली नकली फिल्म का ये गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर ने। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

शुदा आप सुन रहे थे फिल्म असली नकली का ये गीत। आइए अब सुनते हैं बेटे बेटी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी आशा भोसले ने, हसरत जयपुरी की लिखी रचना शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म बरसात की रात का ये गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, रोशन का संगीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और लीजिए सुनिए अपना बना लो इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने, आनंद बख्शी की लिखी ये रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं ये।

चुपके चुपके फिल्म का ये गीत सुनिएगा लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की लिखी रचना और संगीत सचिन देव वर्मन का।

श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं। समय हुआ है हमारे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी का।

जैसे हमें निकलना भी पड़े तो हम थोड़ी सी सावधानी बरते, हम पूरी बांह के कपड़े पहने, सिर को ढक कर रखें और ऐसे निकलें कि हम सब लोग अपने कामों को यथावत भी करें और हम धूप की चपेट में भी ना आए। तरल पदार्थों को पिएं और तरल पदार्थों को पीने के साथ साथ हम थोड़ी सी सावधानियां खान पान पर भी बरतें कि हम ऐसा आहार, ऐसा भोजन ना लें जिसकी वजह से शरीर में परेशानियां उत्पन्न हो। गरिष्ठ भोजन से बचें। ये सब चीज़ें यदि हम करते हैं तो ना तो हम पर ये नौ तपा असर करेगा और हम असर भी करेगा तो गर्मी के रूप में हम सब लोग अपने प्रारंभिक उपचार और बचाव से इसका सामना करने के लिए तत्पर होंगे। तो श्रोताओ, ये तो बात हुई हमारी नौ तपा से बचने की, और अब बात कर लेते हैं शादियों के सीजन में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। जी हाँ दोस्तों, इसमें बाल विवाह जो ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर उन स्थानों पर अधिक होते हैं जहां पर शिक्षा का अभाव है, लोग जानते ही नहीं कि विवाह की सही उम्र क्या है। बेटी के लिए 18 साल और बेटे के लिए 21 साल, क्या इस उम्र के बारे में जो अशिक्षित लोग हैं वो जानते हैं? यदि नहीं तो ये मैसेज अब जागरूकता के साथ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और खासकर बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया के अवसर पर, जब बिना मुहूर्त के इस मुहूर्त में शादियां होती हैं, तो उनमें सम्मेलनों की भी परख की जाएगी ताकि किसी भी तरह से बाल विवाह ना हो। और इसी के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो वर्ष 2030 तक चलना है, और इसका उद्देश्य यही है कि देश को बाल विवाह मुक्त किया जाए, इसी दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने एक पहल प्रारंभ की है। और अब अकेले ब्लॉक या जिला स्तर पर ही यह समिति काम नहीं करेगी, वरन हर स्तर पर इसकी जिम्मेदारी तय हुई है, जिसके तहत जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अनुविभाग स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार यह दायित्व संभालेंगे, जबकि ब्लॉक स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, महिला बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। नगरीय क्षेत्र में सीएमओ, राजस्व अधिकारी, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक को जिम्मेदार बनाया गया है, और सेक्टर स्तर पर राजस्व निरीक्षक, महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक, ग्राम स्तर पर पटवारी इसमें नियुक्त किए गए हैं। जब इतनी सारी ग्रामीण क्षेत्र के आखिरी कोने तक की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि कम उम्र में विवाह ना हो, क्योंकि इससे कई सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, और यदि कम उम्र में हम विवाह करते हैं तो फिर कई सारी परेशानियां उत्पन्न भी होती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ किसानों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों की। श्रोताओ, जिले की 8 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिट्टी जांच का जो विवरण है उसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकासखंड बद्रवास के साथ अन्य जगहों पर भी इसके परीक्षण किए गए और कृषि भूमि की जानकारी लोगों को दी गई। बात कर लें कुछ युवाओं से जुड़ी हुई विभिन्न कार्यक्रमों की, तो युवाओं के लिए एक विशेष रूप से आयसर अकादमी अंतर्गत जो ऑटोमेटिव टेक्नीशियन और ड्राइविंग प्रशिक्षण है उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं, क्योंकि शिवपुरी में ऑटोमेटिव टेक्नीशियन और ड्राइविंग यानी फोर व्हीलर हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसका कोर्स 9 महीने का रहेगा, जिसमें 3 माह का आवासीय प्रशिक्षण शिवपुरी अकादमी में होगा और 6 माह की जो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी वह पीथमपुर आयसर प्लांट

दौर में रहेगी। इस कोर्स को करने पर प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर युवाओं को रोजगार के कई सारे रास्ते खुलेंगे और इसमें 10वीं पास युवा जो 18 से 26 वर्ष तक के हो गए हैं वह इसमें पात्र रहेंगे। बात कर लेते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान की। जी हां, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत शिवपुरी में की और इस अभियान की शुरुआत के साथ ही शहर में पुराने जो क्षेत्र हैं, बावड़ियां हैं, जल संरचना है, उन्हें सहेजने का काम शुरू हो गया है और इसके तहत गुरु गोरखनाथ मंदिर के पास बनी प्राचीन बावड़ी पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और फिर यहां पर रात्रिकालीन भजन संध्या भी की गई। इस कार्यक्रम में श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी सौरभ गौड़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी यहां कार्यक्रम में मौजूद रहे। खास बात यह रही कि इसमें गुना से आए प्रसिद्ध भजन गायक वृंदावन धाकड़ ने जहां गीतों की प्रस्तुति दी, वहीं शिवपुरी की ही देश स्तर पर गायन शैली में अपनी पहचान बना चुकी आकांक्षा ममता गौड़ ने भी एक से बढ़कर एक मनमोहक गीतों की प्रस्तुति दी। उनके गीतों को न केवल सुना गया वरन जब उन्होंने गीतों की तान कार्यक्रम स्थल पर छेड़ी तो मौजूदा श्रोता उनके गायन पर भक्ति में सराबोर होकर नाचने पर भी मजबूर हुए। निश्चित रूप से उन्होंने कई सारे भजन, चाहे वह ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन हो, जमुना किनारे मेरा गांव, सांवरे आई जइयो, जो काना मेरा गांव न जाने, हे दुख भंजन मारुति नंदन, भक्त का मान न टलते देखा, जादू भरी तेरी आंखें, गंगा तेरा पानी अमृत, जैसे कई सारे वो गीत थे जो न केवल आयोजन को यादगार बना गए वरन इसके साथ साथ आकांक्षा ममता गौड़ और गुना से आए गायक कलाकार वृंदावन धाकड़ को यहाँ खासा पसंद भी किया गया। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान जो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी थे डूडा के प्रमुख सौरभ गौड़ और जिला पंचायत के सीईओ श्री विजय राज, इन्होंने कार्यक्रम स्थल पर जल संरक्षण का संदेश भी दिया और जल स्रोतों को सहेजने के लिए उसमें जनभागीदारी के लिए अपील भी की और लोगों को शपथ भी दिलाई कि वह प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की पहल में भागीदार बनेंगे। तो निश्चित रूप से यह आयोजन, यह कार्यक्रम न केवल जिले के लिए यादगार रहा वरन इससे यदि प्रेरणा लेकर हम आसपास की जिलों में या आसपास के लोगों में संदेश दे सके तो ये एक बेहतर कार्यक्रम होगा। बात कर लेते हैं कुछ त्योहारों की। जी हाँ श्रोताओं, ईद उल जुहा के त्यौहार पर कानून व्यवस्था के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें वह मौके पर मौजूद रहकर इस त्यौहार की व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान देंगे। बात युवाओं से जुड़ी हुई और युवा संगम कार्यक्रम का जो आयोजन है उसके तहत कलेक्टर अर्पित वर्मा जी के निर्देशन में आईटीआई परिसर में ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा संगम कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने के कई सारे उपक्रम यहाँ निजी प्रतिष्ठित कंपनियों में भागीदारी के साथ मिलेंगे। इस रोजगार मेले के साथ कई सारी कंपनियां भागीदारी करेंगी और इसमें भाग लेने वाले युवाओं को अवश्य इसमें जाकर अपना समय देना चाहिए। अब इसके साथ बात कर लेते हैं कुछ अन्य सूचनाओं की। तो जनगणना कार्य का जो निरीक्षण करने के निर्देश कलेक्टर ने सभी एसडीएम और चार्ज अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि अंतिम अवसर ये जनगणना का चल रहा है जिसमें पूरी जानकारी के साथ ये डेटा भी फीडिंग होना है। हालांकि जिले का डेटा लगभग 100% होने वाला है और इसमें एकाध जगह की स्थिति छोड़ दें विकासखंड में तो हर जगह बहुत बेहतरता के साथ
प्रगणकों ने काम

किया है, अब सुपरवाइजर इसमें अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और रिपोर्ट सौंप करके जिले को एक जो डेटा तैयार होगा वो डेटा जिले की विकास की योजनाएं कार्य योजनाएं बनाने में बेहद अहम साबित होगा। श्रोताओं, इसके साथ साथ हम कुछ और सूचनाओं से आपको साझा करते हैं, जागरूक करते हैं, जिसके तहत एनसीसी शिविर का आयोजन 1 जून से 10 जून की अवधि में किया जा रहा है, जिसमें शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के 450 एनसीसी कैडेट्स इसमें भागीदारी करेंगे। इन सब सूचनाओं के साथ कुछ और सूचनाएं जो आप सबके लिए भी बेहद जरूरी हैं, उनको भी आप तक हम शेयर करते हैं, जिसमें जो सूचनाएं न केवल आपके लिए उपयोगी हैं वरन काम की भी हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो जो तालाब गहरीकरण कार्यक्रम इन दिनों चल रहे हैं, उसके तहत अलग अलग जगहों पर कलश पूजन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 वाहनों से 69,000 रुपयों की चालानी कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने वाहन चालकों को निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही बढ़ती तो फिर वह कार्रवाई के दायरे में आएंगे। और कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक ना हो इसकी निगरानी के निर्देश श्रम अधीक्षकों को दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मॉनिटरिंग करके यह जांचें कि कहीं भी बाल श्रम का उल्लंघन ना हो और इस दिशा में प्रयास भी किए जाएं ताकि इसकी जानकारी पूरी तरह से लोगों को मिले। तो श्रोताओं, इसके साथ हम एक और जानकारी बिजली कटौती की आपको दे देते हैं कि आज भेड़ फार्म फीडर से सुबह 5 से 10 बजे तक माधवनगर, गणेश कॉलोनी, नवाब साहब रोड, वर्मा कॉलोनी, टोंगरा रोड, आईटीबीपी गेट के सामने रायन मार्केट, ये क्षेत्र बिजली कटौती से प्रभावित रहेगा। तो श्रोताओं, इन उपयोगी जानकारियों के साथ अपने रेडियो मित्र संजीव बांझल को दीजिए इजाज़त।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे हमारा प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम। नमस्कार।
1: वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS

0: अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने

0: वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है।

धुन शंकर जयकिशन की। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है जयपाल जाट, नंदनी जाट, पूनम जाट, मोनिका जाट और बद्री जाट ने कोलारस जिला शिवपुरी से। सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने। भरत व्यास के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है वसंत देसाई ने। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है सौरभ गौड़, ममता गौड़, आकांक्षा गौड़, नम्रता गौड़, जिज्ञासा गौड़ और परिणीति गौड़ ने, न्यू ब्लॉक गायत्री पार्क के पास शिवपुरी से। सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं 20 साल बाद इस फिल्म का ये गीत, मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल की आवाज में, आनंद बख्शी की लिखी रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए सुनिए, हसीना मान जाएगी इस फिल्म का ये गीत, और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, मनीष कुमार और साथियों ने। कल्याण जी, आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, सुनिए ये फिल्मी पैरोडी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये गीत। आइए अब सुनते हैं हीरो फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की लिखी ये रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है अशोक अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, प्रणीत अग्रवाल, देवकी अग्रवाल, नैन्सी अग्रवाल और पुण्या अग्रवाल ने पटेल पार्क के पास

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजे हैं और समय हुआ है कार्यक्रम लोकरंग का। लोकरंग में आज कलाकार हैं गौराबाई और जगन सिंह कुशवाहा। आइए सबसे पहले सुनते हैं गौराबाई का गाया ये लोकगीत।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं लोक कलाकार गौरा भाई के गाए लोकगीतों को। लीजिए सुनिए उनका गाया

कार्यक्रम लोक रंग में आप सुन रहे थे गौराबाई के गाए लोकगीतों को। श्रोताओं, कार्यक्रम लोक रंग में आज आप गौराबाई और जगन सिंह कुशवाहा के गाए लोकगीतों को सुन रहे हैं। गौराबाई के गीतों के बाद अब हम जगन सिंह कुशवाहा के सुनते हैं कुछ गीतों को, सुनते हैं उनका ये चेतावनी लोकगीत।

0: लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी फरमाइश। लीजिए सुनिए फिल्म विदाई का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की लिखी ये रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म भ्रष्टाचार का ये गीत। इसे गाया है सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है दीपेंद्र चौहान, रुचि चौहान, नवलू चौहान, बद्री चौहान और पुरुषोत्तम चौहान ने टीवी टावर के पास शिवपुरी से। सुनते हैं आपकी फरमाइश का इस फिल्म का ये नगमा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सुबह के 10 बजने को हैं, अब थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगी, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जिले की चिट्ठी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय अन्य शहरों की तरह ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक तापमान है। भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। दिन में बाजार में सन्नाटा पसरा है। लू के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी सलाह भी चिकित्सक दे रहे हैं। गर्मी के चलते कई गाँव में पेयजल की भी समस्या बन गई है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा एलईडी प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये प्रचार रथ मंडला बालाघाट होते हुए डिंडौरी जिले पहुंचा, जहां सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। एलईडी प्रचार रथ जिले के सातों विकास खंडों में भ्रमण कर गांव-गांव पहुंचकर आमजन को जनगणना 2027 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देगा और जनमानस में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया को समझने और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन डिंडौरी के सहयोग से जिले की 23 ग्रामीण नलजल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 90,39,000 रुपए की राशि हस्तांतरित कर महत्वपूर्ण पहल की है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों तक नवीन और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसान रथ का 10 दिवसीय संचालन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, उन्नत खेती तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। किसान रथ के माध्यम से किसानों को ई विकास से उर्वरक वितरण व्यवस्था, खरीफ फसल हेतु बीज उपचार, मृदा परीक्षण, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, फसल सुरक्षा पराली प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा खरीफ पूर्व खेतों के समतलीकरण आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने सहित अन्य अपील को आमजन ने सकारात्मक तौर पर लिया है। अब लोग वाहनों का उपयोग कम कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिल, स्कूटी सहित अन्य दो पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। कार्यालयों में वाहनों की कतार नहीं लगती है, साथ ही अधिकांश बैठकें भी वर्चुअल माध्यम से की जा रही हैं। इसी तरह बाजार में भी ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ कम हो गई है। व्यापारी भी प्रधानमंत्री की अपील में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदुरिया द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी विभागीय अधिकारी

अधिकारियों, कर्मचारियों और शासकीय वाहन चालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत शासकीय वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए किया जाए। अनावश्यक वाहन संचालन और बिना अनुमति वाहन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 5 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण आरोह 2026 के अंतर्गत मां नर्मदा नदी तट पर विशेष संडे एक्टिविटी में डांस एरोबिक्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरोबिक्स, योग, सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताएं संचालित की जा रही है। डिंडौरी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न विकासखंडों में समारोह पूर्वक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 750 से अधिक जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधुओं को शुभकामनाएं दी। जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले में कुल 5,52,638 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ प्रदान, महिला और बाल विकास, पीएचई, जल संसाधन विभाग, इन सभी विभागों के समन्वय से वर्षा के पानी को सहेजने के लिए लाखों रिचार्ज पिट, सोखता पिट बनाए जा रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आपने सुनी डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं राम शंकर और साथी। आइए सुनते हैं उनकी गाई कुछ गजलों को। सबसे पहले सुनते हैं उनकी गाई ये गजल।

0: Instagram कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए श्रोताओ, सुनिए राम शंकर की आवाज में ये गीत, रचना अशीर बुरहानपुरी की है।

श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में कलाकार राम शंकर को। लीजिए सुनिए उनकी गाई इधर रचना बहराव अरुण की है।

आप सुन रहे हैं कलाकार राम शंकर को। लीजिए सुनिए उनकी गाई ये रचना। असीर बुरहानपुरी ने लिखी है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। समय हुआ है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आइए सुनते हैं सबसे पहले फिल्म अमर अकबर एंथोनी का ये गीत। इसे गाया है किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और लीजिए सुनिए फिल्म बेटा का ये गीत। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण साथियों ने। समीर की लिखी रचना, आनंद मिलिंद का संगीत। गीत सुनने की फरमाइश भेजी है परमीत सेठी, भानु सेठी, पूनम सेठी, नंदनी सेठी और जिज्ञासा सेठी ने, विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी से। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 MHz पर। लीजिए सुनिए मन ममता की छाओं में इस फिल्म का ये गीत अमित कुमार किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत किशोर कुमार का है। सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। देवकी नंदन भार्गव, KD भार्गव, पुण्य भार्गव और समृद्ध भार्गव शंकर कॉलोनी से।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 MHz पर। लीजिए सुनिए मन ममता की छाओं में इस फिल्म का ये गीत अमित कुमार किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत किशोर कुमार का है। सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। देवकी नंदन भार्गव, KD भार्गव, पुण्य भार्गव और समृद्ध भार्गव शंकर कॉलोनी से।

0: सब फ्री हैं। तो खेती किसानी करते हैं
1: हाँ जी,
0: जी। चलिए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: जी।

0: हेलो,
1: हेलो, फरमाइश। आकाशवाणी भोपाल।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: जी, हृदय से धन्यवाद।
0: जी। नाम बताएं अपना।
1: जी, मैं आपका शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, आप कैसी हैं? मौसम कैसा है आपके यहाँ?
0: बहुत अच्छा मौसम है, आप बताइए। बस मौसम तो इस समय बस सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, उफ इतनी गर्मी है ना।
1: जी, निसंदेह यहाँ
0: हाँ,
1: मथुरा में यही हाल है।
0: सब
1: जबरदस्त गर्मी
0: जी,
1: हो रही है,
0: सभी जगह
1: चमचमाती हुई
0: यही
1: धूप
0: हाल हो रहे
1: रहती है,
0: हैं,
1: गर्म गर्म हवाएं चलती
0: सब
1: हैं।
0: बेहाल है उससे।
1: जी, लू के प्रकोप में है इस वक्त मथुरा वृंदावन, पूरा ब्रज क्षेत्र।
0: जी, बताएं आज क्या फरमाइश आपकी है।
1: आदरणीय दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है बाबरची, भोर
0: बावर्ची फिल्म।
1: आई गया अंधियारा। बहुत ही सुंदर प्यारा सा गीत है।
0: तो इस समय तो दोपहर है।
1: जी, जब ये तो प्रसारित होता है तो भोर ही रहता है, 11 बजे तो हम
0: तो
1: भोर ही
0: आप
1: मानते हैं।
0: नहीं, तो
1: गुड
0: हमारा
1: मॉर्निंग
0: हमारा
1: बोलते
0: रेडियो
1: हैं,
0: का
1: सवेरे
0: प्रसारण
1: बोलते
0: तो
1: हैं।
0: सुबह 6 बजे से आरंभ हो जाता है, आप देर से आरंभ करते होंगे, है
1: जी,
0: ना। हाँ, सुबह से सुना करिए, सुबह से ही कार्यक्रम हमारे, सुबह 6 बजे से हमारा रेडियो आरंभ होता है जो रात के 11 बजे तक लगातार चलता है।
1: निसंदेह आप
0: सुनिए।
1: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या समस्त भारत के आकाशवाणी केंद्र सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं। जी
0: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

इंद्र चढ़ो ब्रज ऊपर धोबी करत सब हा हा दैया नाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत धेनु चरैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

Hey,

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते।
1: मध्य प्रदेश के देवीदास वड़ेले बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: देवीदास जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी मैडम जी, आज मुझे गाना सुनना है। ये फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी।
0: जैसी करनी वैसी भरनी, इसका कौन सा
1: गायकार है? नितिन मुकेश
0: जी।
1: और गीत के बोले जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो बोएगा वही पाएगा।
0: ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो हम बोते हैं वही पाते हैं, कर्मों का फल हमको यही मिल जाता है ना।
1: जो करने की हो तो जो जैसी करनी वैसी भरनी होती है मैडम जी।
0: हाँ ये बात सही है, आप अपने जीवन में लागू करते हैं।
1: बिल्कुल मैडम जी, मैं तो बिल्कुल अमल करता हूँ।
0: करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल मैडम जी। और वही छोटा सुनते उनको भी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वो भी अपनी बात को अमल करे। कोई भी काम अपने से गलत ना हो,
0: गलत ना हो, किसी के लिए बुरा ना करे,
1: किसी का बुरा ना करे, ना बुरा होए,
0: ना बुरा होए के लिए तो ईश्वर देखिए अच्छा बुरा दोनों करता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए हम।
1: देखे ना मैडम जी, बुरा जो देखण में गया बुरा ना मुझसे होए।
0: जी
1: जो दिल खोजा अपना बुरा ना मुझसे होए।
0: बिल्कुल, मुझसे बुरा ना कोई।
1: जी
0: चलें, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने। हेलो,
1: हेलो, मैं न्यू जंक्शन बोल रहा हूँ कटनी से। जी,
0: थोड़ी आवाज ऊंची रखिए, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल।
1: मैं सुनील गर्ग बोल रहा हूँ कटनी
0: सुन,
1: से। जी
0: कटनी से, कटनी के हालचाल सुनाए कुछ।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार मैडम। फोन
1: नमस्कार
0: करेगी इसने?
1: जी। हाँ, फोन करें, गीत सुने।
0: हाँ मैडम, मैं जसराम जाटव बोल रहा हूँ, जोराई से। हाँ
1: जसराम जाटव, जौराई से।
0: जिला
1: जौराई कहाँ पड़ता है?
0: सीपी में। हाँ
1: जिला सीपरी में।
0: मैडम,
1: अच्छा, वहाँ पर आपका क्या कारोबार है?
0: कुछ नहीं मैडम, खेती किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी। खेती किसानी से अभी फुर्सत है या कुछ वहाँ पर अभी बोया हुआ है या कुछ काम लगा है आपका?
0: नहीं मैडम, क्या है, अब तो गर्मी का टाइम है तो अब तो कुछ काम नहीं है। अपना काम जो जून से चालू हो जाएगा। पानी
1: जून से चालू हो जाएगा। पानी की कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ?
0: की व्यवस्था मैडम, हमारे यहाँ कुआ की व्यवस्था है, कुआ है।
1: कुआं है तो कुएं में अभी पानी पूरी गर्मी में रहता है?
0: नहीं मैडम, गर्मी में नहीं रहता है वो। क्या है मैडम, गेहूं गेहूं की खेती करा देता है, गर्मी में नहीं रहता पानी उसमें।
1: तो आप लोगों ने सबका मिल करके कुआं है या आपका अकेला कुआं है? वो
0: तीन तीन भाई हैं।
1: तीन भाई हैं।
0: हाँ।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: साहब नमस्कार
0: नमस्कार, आपका क्या रेडियो चल रहा है?
1: जी। हाँ
0: रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए या आप उससे दूर हो जाइए। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कोदूलाल जायसवाल, पोस्ट मुकाम भैंसवाही, तहसील बिजराहगढ़, जिला कटनी।
0: जी आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी मैं,
0: हाँ
1: आप कौन मैडम बोल रही हैं साहब?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ। आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं अभी इसी वक्त
0: इसी वक्त नहीं, कल।
1: कल धड़कन का दिल में ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
0: चलिए सुनिए अब आप गीत। नमस्कार।

0: आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नए श्रोताओं और नए साथी के साथ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में कराया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दिन के बारे में आयुष मंत्रालय

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:11 हुए हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दो कलियां फिल्म से। लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। आप सभी ने ये पत्र लिखे हैं मुझे और ये गीत सुनने की फरमाइश की है। भोपाल से विनोद आर्य, शांता आर्य, सीमा विनय अग्रवाल, मृदुल मीनू आर्य, अतुल विनीता अग्रवाल, नेहल, ऋत्विक, सात्विक, अवि, अनु अग्रवाल ने। तो आप सभी की पसंद पर ये गाना हम आपको भेज रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना। लीजिए अगला गीत हमने पसंद किया है आपकी पसंद पर। दो बूंद पानी से ये फिल्म का गीत है। परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम ने इस गीत को गाया है और साथी भी हैं। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है और जयदेव ने इसका संगीत तैयार किया है। इस गीत को पसंद किया है ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा, अक्षरा, अनुष्का शर्मा ने भोपाल से। इसी गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पांचोलिया, प्रियंका पांचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पांचोलिया ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। मैं हूं आपके साथ साधना और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म में लता मंगेशकर को गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। आप सभी श्रोताओं ने हमें चिट्ठियां भेजी हैं। भोपाल सुभाष नगर से सुनील जैन, सुधीर, सारिका जैन, साहिल, अंकिता जैन, समीर, कृतिका जैन, सौम्या, शुभ्रा सम्यक और वेवी शार्बिल ने। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश, मैं थी आपके साथ साधना जैन। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिएगा सिसकियों का भाग एक।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: अजी सुनते हो,
1: क्या है?
0: ये ट्रंक तो जरा खिसकवा दो। रात को सोने के लिए एक तरफ कर दिया था।
1: अरे ये क्या सुबह सुबह ट्रंक लेकर बैठ गई? अरे अभी अभी तो बहू घर में आई है, सुबह सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं। अभी से ट्रंक को कुछ मत कहो।
0: अजी, बहू आई है घर में तो कोई गैर नहीं है, तुम्हारी सगी भांजी है।

0: और वैसे भी तो वो यहाँ एक महीना रह कर गई है। इस घर के मिजाज के बारे में बाखूबी जानती है।
1: अरे मुश्ताक की अम्मा, मैं कह रहा हूँ अभी अभी वो लोग सो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनकी आंख खुल जाएगी।
0: जी कहाँ की बात कर रहे हो,
1: अब
0: हमारी बहू तो सुबह ही उठ गई।
1: हाँ?
0: वो देखो गाय को चारा डाल रही है।
1: फजी भाई, ये तो गलत बात है, अरे उसे मना करो। अरे अभी अभी रात ही तो ब्याह कर लाए हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू के आने में देर नहीं हुई और आते ही बैल की तरह खेत में जोत दिया।
0: अजी मैंने कुछ नहीं कहा उससे, वो खुद उठी है।
1: अब
0: और शादी से पहले भी जब वो आया करती थी तो घर में सबसे पहले वो ही तो उठती थी। अरे अपने घर में भी तो ऐसे ही उठती थी सारे। उसकी माँ वाता कौन सा काम करती थी, बस सारा बोझ इसी बेचारी पर था।
1: हाँ, बात तो तुम ठीक कहती हो, सारे की बचपन से ही ऐसे ही काम करने की आदत है। अपने छोटे भाइयों को भी तो यही संभालती थी।
0: सही कहते हो, तुम्हारी बहन को तो फुर्सत ही नहीं थी घर की तरफ देखने की। वो तो पता नहीं किन किन कामों में अपनी अकल लड़ाती रहती थी।
1: अरे उस पाता के बारे में तो बस बस क्या कहूं। अरे गांव का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिससे उसका झगड़ा ना हुआ हो।
0: हाँ
1: बाप रे, फाता की क्या लंबी जबान है। अरे अरे वो तो मेरी बहन है, इसलिए डर से ज्यादा नहीं बोलती, वरना वरना नाकों चने चबवा दे। अरे तुम तो उसके आगे बहुत सीधी हो, ये फाता बचपन से ही ऐसी थी, घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली और लड़ने वाली ये फाता ही थी।
0: लाहौल बिलाकुवत, क्या कर रहे हो जी, आहिस्ता बोलो। अब उसकी बेटी हमारी बहू है, ये बातें अब हमें जेबा नहीं देती।
1: हाँ जी चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ही तो कह रहा हूँ, सारे तो बच्ची है। अरे अपने मामा की बात का क्या, बुरा थोड़ी मानेगी वो।
0: खैर छोड़ो भी ये सब बातें, वो अब हमारी समधन है, उनके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे कुछ कहो, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह अच्छी रही, हमारे मुश्ताक के साथ खूब जचेगी सारे।
1: अरे जचेगी क्यों नहीं, जैसे हमारा मुश्ताक खूबसूरत है वैसे ही सारे में भी देखो कितनी कोशिश है, अरे कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
0: हाँ जी
1: अरे खुदा ने बड़े सोच समझ के जोड़ी बनाई है।
0: हाँ, चलो निकाह तो हो गया, अल्लाह ताला अब कर्जा चुकवा दे। निकाह के लिए हम लोगों ने बहुत कर्जा ले लिया, अभी हमारे दो बेटे और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है।
1: अरे तुम फिक्र क्यों करती हो बेगम, तुम देखना देखना तुम, अल्लाह ताला सब कर्जा चुकवा देगा। अरे मुझे मुश्ताक पर पूरा भरोसा है, उसका मालिक कह रहा था मुश्ताक जैसा दर्जी पूरे कश्मीर में ढूंढने से नहीं मिलेगा,
0: हाँ
1: और कहता है जितनी मेहनत से काम यहाँ मुश्ताक करता है उतना और कोई भी नहीं करता। अरे देखना देखना, एक दिन तुम बहुत नाम पैदा करेगा हमारा मुश्ताक। और पैसे का क्या है, अरे जब अच्छा कारीगर है तो पैसा कमाना कौन बड़ी बात है। हाँ चुक जाएगा सब पैसा धीरे धीरे।
0: हाँ अब तो सब कुछ पहले से ही सोच कर बैठे हो। अरे ये तो मेरी ही तजवीज थी कि मुश्ताक को दर्जी बनाना है, वरना वो भी हाज रसूल की तरह ड्राइवर ही बना होता। अरे
1: उसका तुम नाम मत लो उसका मेरे सामने।
0: क्या हो गया, अब तो उसने रिश्तेदार की बेटी से निकाह भी कर लिया है।
1: अरे नूरी से शादी करके कोई कोई

0: बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया उसने। अरे नूरी की शादी उससे नहीं होती तो किसी और से हो जाती, लेकिन ऐसी नौबत तो ना आती कि वो अब
1: क्यों, क्या हो गया? मैं तो उसके घर भी नहीं गई, तुम तो गए थे ना परसों वहाँ। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? तुमने आकर कुछ बताया ही नहीं था।
0: अरे क्या खैरियत है, उस कमबख्त रसूल ने नूरी की नाक में दम कर रखा है, न जीने देता है न मरने देता है, उसको मारता है इतना कि बस पूछो मत। यहाँ आई थी अपने महके में, मैंने उसे देखा, अरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे।
1: अरे देखो जी, वैसे ये नूरी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जबान है इसकी, औरत की तो जबान ही जूते खिलवाती है और जबान ही सिर पर बिठवाती है। यहाँ जब नूरी आती थी तो कितना बोलती थी और कितने नखरे करती थी।
0: देखो ये, अरे रसूल की तुम तरफदारी मत करो। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कितना याश आदमी है, तुम्हें पता है? हाँ पता नहीं तुम्हें, अरे गांव के बाहर कितनी औरतों से, और तो और दो नंबर की कमाई खूब करता है, अरे तभी तो उसके पास इतना पैसा है।
1: अरे रे रे, ये तो बड़ा ही खराब आदमी है, मैं तो इसे इतना बुरा नहीं समझती थी, लेकिन आज तुमने ये सब बताकर।
0: अरे तुम तो औरतें घर में रहती हो, तुम्हें किसी बात की खबर भी रहती है?
1: हाँ हाँ ठीक है, चलो अब ये ट्रंक खिंचवा दो, बहुत हो गई बातें।
0: ठीक है आओ, लो लो। अरे पकड़ पकड़ मुझे।
1: लाइए अम्मी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सारे, तुम अभी किसी भी काम को हाथ ना लगाओ, तुम्हारे मामू नाराज हो रहे थे।
0: अरे
1: अब तुम्हें जिंदगी भर यहाँ काम ही तो करना है, अगर थोड़ा वक्त मिला है तो उसे आराम से काट लो। अभी तुम जाओ जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। कैसी बातें करती हैं अम्मी, मैं आपकी कोई बहू थोड़े ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, और जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना शुरू कर दूं?
0: अरे नहीं सारे बेटी, ये सब ठीक नहीं है। देखो आखिर जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है, अभी अब तुम्हारी अम्मी काम कर रही है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है?
1: हाँ सारे, अभी तुम जाओ, देखो तो शायद मुश्ताक तुम्हें बुला रहा है।
0: देखो बेटी देख लो।
1: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अभी आती हूँ, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे भाई ये नहीं मानेगी, देखना अब तुम, ये मुझे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देगी।
0: वाह वाह, खुदा ऐसी बहू सबको दे।

0: साराय?
1: हाँ?
0: ओ प्यारी साराय, अरे अपने हाथों से एक प्याली चाय तो पिला दो भाई, अब हमारे काम पर जाने का वक्त हो गया है।
1: अजी, हमारी आंखों के सामने बैठोगे तभी तो चाय पिलाएंगे ना।
0: अरे लो लो लो, ये पानी पियो। इतनी बार कहा है कि चूल्हे में ये गीली लकड़ियां मत डाला करो।
1: लो चाय पियो।
0: वाह सारे, तुम्हारे हाथ की चाय पीना भी नसीब वालों को नसीब होता है। क्या चाय बनाई है।
1: अजी, पहले एक घूंट पी तो लो। चाय अभी तुमने पी भी नहीं और तारीफ करनी पहले ही शुरू कर दी।
0: अरे साराय, तुमने जो कुछ बना दिया वो मेरे लिए अमृत है, चाहे वो जैसा भी बना हो।
1: बस बस, अब जल्दी से चाय पियो, आपके जाने का वक्त हो गया है।

0: देख रही हूँ आप आजकल यहीं पर देर कर देते हैं।
1: सोच रहा हूँ कि आज जाऊं ही नहीं।
0: क्या?
1: हाँ, कुछ मन नहीं कर रहा है। सारे चलो, आज हम दोनों बैठकर पूरे दिन बात करेंगे।
0: शादी को अब तो काफी दिन गुजर चुके हैं, ये सब बातें अब तो ना किया करो।
1: अरे भाई, हम तो ऐसे ही जिंदगी तुम्हारे आगे बैठकर गुजार दे। सोचता हूँ आज की छुट्टी कर ही लूँ।
0: बस बस, आप छुट्टी का नाम ना लिया करें, पहले ही बहुत छुट्टी कर चुके हैं, ज्यादा छुट्टियां की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या
1: अरे बाप रे,
0: हुआ?
1: आज तो बहुत देर हो गई सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। हो सकता है मैं दोपहर में चक्कर लगाऊँ, जब सब सोते हुए होंगे मैं तभी आऊंगा।
0: हाय अल्लाह, नहीं, उस वक्त अम्मी जाग रही होती हैं।
1: अच्छा, ये सब बातें दोपहर को करेंगे। खुदा

0: क्या बात है फाता, आज बड़े गुस्से में घर साफ कर रही हो।
1: अरे घर तो साफ कर रही हूं ना, चाहे गुस्से में ही सही। और यहाँ है भी कौन मेरे साथ काम करने वाला? सारे की शादी ऐसी हुई कि उसने आने की खबर तक नहीं ली। 8 महीने हो गए हैं उसे अपनी ससुराल गए हुए, और एक दिन के लिए भी नहीं आई अपनी माँ से मिलने।
0: अरे अगर वो नहीं आई है तो तुम जाकर क्यों नहीं मिल लेती? आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई का घर है।
1: हाय अल्लाह, तुमसे मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा। जब देखो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो। अरे अब वो समधी है हमारे, समझे?
0: अरे बेगम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मैके की उसे याद नहीं आती। उसको ससुराल में इतना प्यार मिला है।
1: क्या क्या कहा? मैं क्या उसे यहाँ मारा पीटा करती थी जो मुझे याद नहीं करती?
0: अरे मुझे पता नहीं क्या, फालतू में अपना दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। अरे अब तो उसकी खुशी में ही खुश रहा करो।
1: क्यों, क्या हुआ? मुझे कौन सी जलन हो रही है उसके खुश रहने से?
0: वैसे कुछ भी कहो, सारे की किस्मत खुल गई है वहां जाकर। अब तो उसके पास दो दो गायें हो गई हैं। मुश्ताक की सब जगह धूम है। बहुत अच्छे कपड़े सीता है और पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे उसने फजी और सारे को बहुत सारी किरण ला कर दी है। तुम्हारी बेटी वहां खूब ऐश कर रही है।
1: ऐश कर रही है। अरे ये तो मेरी बेटी का नसीब था जो उसे मिल रहा है। कहीं और भी जाती तो ऐसी ही महारानी की तरह रहती। बल्कि किस्मत वाली तो फजी है जिसे सारे जैसी बहू मिली। अरे उसके भाग्य से ही तो ऐश कर रही है, इसलिए तो सारे को यहाँ नहीं आने देती। खुद तो वहां महारानी बनकर बैठ जाती होगी और मेरी बेटी पर हुकुम चलाती होगी।
0: अरे अरे बेगम कैसी बातें करती है। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तुझे शर्म नहीं आती?
1: शर्म कैसी चीज? जो बात सही है वो सही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देखा नहीं है गांव की और लड़कियां कैसे अपने शौहरों और सास ससुर को अपने कब्जे में किए रहती हैं? हमारी सारे तो इतनी सीधी है कि फंस गई होगी उनके चंगुल में।
0: अरे तू पगला गई है क्या? तेरे भेजे में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि वो वहां खुश है?
1: या खुदा, अजी अब वो अपने मुंह से थोड़े ही कहेगी कि मैं परेशान हूं। वो जो उसकी सास है ना फजी, बहुत ही चुप भुन्नी औरत है। बड़े प्यार प्यार से सारे काम करवा लेती है। और वो जो है हमारी सीधी लड़की सारे, उसको तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। अरे अपने आप को उस घर में जाकर झोंक दिया। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर उन लोगों की गुलाम बनकर रहेगी, महारानी बनकर नहीं।
0: ओहो, वहां पर करीम और फजी अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करते हैं। उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते।
1: अरे मेरे भोलू राम, कितने भोलू हो तुम। अरे तुम लड़की के बाप हो। जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे सामने तो काम नहीं कराएंगी ना, बल्कि झूठा प्यार ही करेंगे, समझे?
0: फाता फाता, वो तेरे भाई का घर है, उसके लिए ऐसी गंदी सोच रखती हो।
1: अजी चुप रहो जी, मैंने अच्छे अच्छे घर देखे हैं। करीम अगर मेरा भाई है तो मेरा खून है, पर फजी तो मेरा खून नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची सारे के ऊपर उस फजी ने क्या जादू कर दिया है कि वो हमें याद ही नहीं करती। एक दिन के लिए कभी मिलने भी नहीं आई। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
0: ओहो, पर देखो बेगम, तुम कुछ भी ऐसा मत कर देना कि हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए।
1: वक्त आने पर बताऊंगी।

0: అమ్మా అమ్మా
1: हाँ बहू।
0: अम्मा मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी दरगाह शरीफ चलती तो अच्छा होता।
1: नहीं बहू, तुम लोग जाओ दरगाह पर और दीप जला कर आओ, जाओ।
0: लेकिन अम्मा आप घर का सारा काम करेंगी, अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
1: तुम इसकी फिक्र मत करो बहू, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। जाओ, आज तुम मुश्ताक के साथ घूम कर आओ, जाओ।
2: अब चलो भी साराय, बहुत देर हो चुकी है, निकलो यहाँ से।
0: हाँ हाँ चलते हैं जी, इतनी जल्दी किस बात की है।
2: अगर मैंने तुम्हें आगे की बात बता दी तो तुम सिर के बल भागती हुई चलोगी।
0: अच्छा बताओ तो जरा क्या बात है।
2: अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा।
0: ओफो मुश्ताक, आप बहुत खराब हैं।
2: अच्छा बाबा, अब चलो यहाँ से, चलो।
0: चलिए। मुश्ताक देखो कितना अच्छा लगता है ना, इस डल झील के किनारे बैठकर वादियों को देखना। कितनी खूबसूरत दरगाह है, कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ।
2: साराय,
0: हाँ
2: तुम तो शायद यहाँ पहली बार आई हो।
0: हाँ मुश्ताक, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मुझे अगर इसकी खूबसूरती का जरा भी अंदाजा होता ना तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोज आती।
2: अच्छा चलो, अब दरगाह में अंदर आओ, रत्नदीप और रोट वहीं चढ़ाया जाएगा।
0: हाँ, चलिए।

0: मैंने तुम्हारा दीप जला दिया, इसे वहां ले जाओ। अरे जाहिल औरत, इसने तो दीप बुझा दिया।
1: मुश्ताक, ये तो आप शगुन है, ये ठीक नहीं हुआ।
0: अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हवा से तो दीप बुझ ही जाते हैं, फिर जल जाएगा।
1: नहीं मुश्ताक, ये अच्छा नहीं होता। मेरी एक सहेली का दीप भी इसी तरह बुझ गया था। उस बेचारी का 1 महीने के अंदर ही तलाक हो गया था मुश्ताक।
0: अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन अलग कर सकता है। बस तुम नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करती रहो। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, आओ इधर आओ। वो देखो, तेज हवा में कैसे पानी में बहते हुए दिए बुझते जा रहे हैं और पीर साहब उन्हें बार बार जलाते जा रहे हैं।
1: हाँ सही कहा आपने, वो देखो पीर साहब फिर से जला रहे हैं दीप।
0: अरे जब पीर साहब दोबारा जला सकते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते। ये देखो, ये मैंने माचिस निकाली और ये लगाई।
1: लाओ मुझे दो, मैं इसे पानी में बहाऊंगी और अब की बार ये नहीं बुझेगा। मुश्ताक, अब तो बता दो ना कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ।
0: चलो अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग अब निशात बाग जा रहे हैं।
1: क्या निशात बाग जा रहे हैं? ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ मुश्ताक, आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं आप।
0: बस बस बस, इतना मक्खन मत लगाओ। मुझे मालूम है कि तुम आज तक निशात बाग नहीं गई हो और तुम्हारा वहाँ जाने का बहुत मन था। और इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा हूँ।
1: मुझे पता है, हम कब तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर?
0: बस समझो कि पहुँच ही गए।
1: हाँ?
0: वो देखो सामने बाग की रौनक नजर आई।
1: हाँ? क्या क्या यही निशात बाग है?
0: हाँ।
1: ये दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
0: अरे सारे सवाल यहीं बैठे बैठे पूछ लो कि क्या, किनारा आ जाए तो खुद ही सब देख लेना। अब देखो सारा नजारा कैसा लगा।
1: नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्ताक यहाँ लड़कियाँ देखो ना कैसे लड़कों के गले में हाथ डालकर घूम रही हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, कैसी गंदी लग रही हैं।
0: अरे सारे ये तो आजकल का फैशन है।
1: और देखो तो कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं इन्होंने, सारा जिस्म नजर आ रहा है।
0: अरे मैं ऐसे ही तो कपड़े सिलता हूँ।
1: क्या?
0: हाँ मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, देखो कितने अच्छे लगते हैं। और ये सब कपड़े मैं तुम्हें भी ला कर दूंगा।
1: मुझे नहीं पहनने। क्या तुम इतने बेहुदा कपड़े सिलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: अरे शर्म किस बात की, ये काम है मेरा। अगर ये कपड़े ऐसे नहीं सी कर दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। अब तुम जरा यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ।
1: ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ, पर जल्दी आना।
0: अरे बस यूं गया और यूं आया। देख गुरु देख, क्या लड़की बैठी है। अरे इसका आशिक इसके लिए कुछ लेने गया होगा।
2: अरे गुलाब लेने गया होगा। वैसे यार
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि सबसे बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत

जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदानीरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। आज से 2 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। खजुराहो में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एवं आयुष मंत्रालय के सहयोग से 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां आज केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जून को योग का प्रमुख कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। यह देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की। महिला सभा कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम जानते हैं कि आप समय और पैसे की बचत में माहिर हैं और ऐसी ही सीख आप अपने नौनिहालों को भी दे रही हैं। जाहिर सी बात है, हमारे बुजुर्गों की यह सीख हमेशा उपयोगी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं। खर्चे जब आय से अधिक हों और गैर जरूरी हों तो वो फिजूल खर्ची ही तो मानी जाती है ना। हमारी जरूरतों की और ख्वाहिशों की कहीं कोई सीमा नहीं होती, हमें उनकी सीमा तय करनी पड़ती है। अपनी आय के मुताबिक व्यय और बचत की आदत तो डालनी ही चाहिए। जरा विचार तो करें कि पैसा तो आया पर गया कहाँ। वेतन मिलते ही एक बजट बनाना जरूरी है सखियों। आपातकालीन बजट हमारा भविष्य सुरक्षित करता है। सुविधाजनक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, ये बचत बढ़ाने में मदद कर सकता है। हर 15 दिन में खर्चों का हिसाब जरूर देखें। और हाँ, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा देना भी जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे निवेश की आदत को भी अपनाएं। वित्तीय अनुशासन हमें आत्मविश्वासी बनाता है। अपने भविष्य, अपने सुखद सपनों के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी बचत ही हमारे आड़े वक्त की सबसे बड़ी साथी है। जरूरत पर हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना। अब यही सोच रही हैं ना आप कि अब तो सुविधाओं के ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट के आदि हो गए हैं हम, क्या करें, ये आदत तो अब दूर ही नहीं होती। तो हमारा ये कहना है, अच्छी आदत की शुरुआत कभी भी शुरू की जा सकती है, आज से ही और अभी से ही। बजट बनाते समय 50-30-20 का फार्मूला अपनाएं। 50% जरूरी कामों में, 30% घूमने, शौक वगैरह में और 20% बचत के लिए सबसे पहले निकाल कर अलग रख दें। अब कुछ खर्चे तो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें सीमित रख सकते हैं। जैसे बिजली के खर्च को सीमित रखना तो हमारे हाथ में ही है। 5-स्टार रेटिंग के उपकरण ही इस्तेमाल करें, एसी का कम इस्तेमाल करें। ईएमआई की सुलभता तनाव को लाती है सखियों। विचार विमर्श के बाद ही ईएमआई पर कोई सामान लेने का निर्णय लें। अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें कि पिछले महीने कौन सा खर्च फिजूल ही हुआ, जिसके खर्चे से बचा जा सकता था। ऐसी बातों पर संकोच नहीं करें। अपनी नासमझी पर हंस भी सकते हैं आप और अगले महीने की बैठकर परिवार के साथ प्लानिंग बनाएं। सच तो ये है सखियों कि हम अपनी मुस्कुराहट को जी भर कर खर्च करने में कतई संकोच न करें। इसे जी भर कर लुटाइए, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट जो है ना, वो खुशबू की तरह बिखर कर औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आती है।

0: और सखियों, हम जानते हैं कि गीत सुनने की तरह ही आपको कहानी सुनना भी बहुत पसंद है। अच्छा कथानक हो, एक सुखद अंत हो और दृश्य इस तरह से रचे गए हों कि ऐसा लगे हम तो इस कहानी के साथ ही चल रहे हैं। ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी लेकर आज हम आपके लिए आए हैं, वो सांवली लड़की। ये शीर्षक है इस कहानी का। कहानीकार हैं सुप्रतिष्ठित कहानीकार सुश्री नीरजा वर्मा।
1: रोज शाम को अपने कमरे की बालकनी में बैठे हुए आते जाते लोगों को देखना मेरा प्रिय शगल था। बुजुर्ग सजी धजी महिलाएं, हंसते खेलते हुए बच्चे, सभी तो गुजरते थे घर के सामने से। इन्हीं सब के बीच एक सांवली लड़की भी थी जिसे मैं रोज देखती थी। उम्र होगी यही कोई 20-22 साल। उसकी सादगी में ऐसा आकर्षण था कि जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक नजरें उसका पीछा करती थीं। एक दिन उसने नजरें ऊपर उठाई और मुझे अपनी ओर देखते हुए पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उस दिन के बाद से कई बार हम लोगों की नजरें आपस में टकराती और इस प्रकार हम लोगों के बीच एक मौन रिश्ता बन गया था। किसी दिन उसे रास्ते से जाते हुए नहीं देखती तो दिन खाली खाली लगता। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मैं कुछ नहीं जानती थी, पर रोज उसका इंतजार जरूर रहता था। कई दिनों से अब उसके साथ उसी की उम्र का एक नौजवान भी कभी कभी उसके साथ दिखने लगा था, शायद उसका दोस्त था। उन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगता था।

तो बड़ी सादगी से, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ अपने कुछ लोग और तुम्हारे जैसी कोई लड़की जो अपनी सादगी से सबका मन मोह ले। उस समय अजय की आंखों में अपने लिए चाहत देखकर मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि जिंदगी का सफर साथ तय करना चाहते थे, पर हम दोनों ही इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि अपने घर वालों को समझा पाते या उनके विरोध की परवाह न करते हुए कोई कदम उठा पाते। और फिर वही हुआ जैसा कि आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। मेरी शादी तय कर दी गई और फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि पीछे मुड़कर देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज भी एक कसक है मन में अपना मनचाहा जीवन साथी ना पाने की। कुछ दिनों से लड़की फिर अकेली दिखाई दे रही थी। जिज्ञासा हो रही थी कि क्या हुआ, उसका साथी दोस्त वो लड़का कहाँ गया, अब वो इसके साथ क्यों नहीं दिखता। कई सारे सवाल दिमाग में घूमने लगे थे, पर पूछूं तो कैसे, आज तक तो उससे कभी बात की नहीं थी। फिर सोचती मुझे क्या करना, क्यों मैं उसके विषय में इतना सोचती हूँ, क्यों उसके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मन था कि मानता ही नहीं था। शायद उसमें मैं अपना अतीत देखती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, जब वो शाम को दिखाई दी तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो वो लड़की कुछ हिचकिचाई, फिर मेरी बालकनी के नीचे आकर खड़ी हो गई। मैंने बालकनी से ही उससे जीने की ओर इशारा करते हुए ऊपर आने को कहा। जैसे ही वो ऊपर आई, मैंने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटी, अगर ऐतराज ना हो तो कुछ देर मेरे पास बैठोगी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मेरा स्नेह देखकर वो सकुचाते हुए बैठ गई। शायद उसे लग रहा था आ तो गई हूँ, पर अनजान घर में अनजान महिला से क्या बात करूँ। मैंने उसकी स्थिति को समझते हुए उससे प्रश्न किया, बेटी कहाँ रहती हो, रोज तुम्हें जाते हुए देखती हूँ, कई बार सोचा कि तुम्हें बुलाकर बात करूँ, फिर लगा पता नहीं तुम क्या सोचो, पर आज रहा नहीं गया इसीलिए तुम्हें बुला ही लिया। आंटी, मेरा नाम आरती है, मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहती हूँ, मेरे ऑफिस से वापस लौटने का समय होता है यह, मैं भी रोज आपको देखती हूँ, कई बार जब आप बालकनी में नहीं होती तो सोचती थी कि काम में व्यस्त होंगी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आरती ये कहते हुए थोड़ी सहज हो गई थी और थोड़ी देर बाद तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बातों में ही पता लगा था कि वो नौजवान उसके ऑफिस में ही काम करता है और चूंकि उसके घर के ही पास रहता है इसलिए वे लोग कभी कभी साथ ही ऑफिस से घर लौटते हैं। धीरे धीरे आरती मेरे साथ काफी घुल मिल गई थी। अब वो कई बार मेरे पास आ जाती थी, अगर किसी कारण से नहीं आ पाती तो रास्ते से ही हाथ हिलाकर हमारे बीच मुस्कुराहटों का आदान प्रदान जरूर हो जाया करता था। हम लोगों के बीच का रिश्ता कब इतना गहरा हो गया पता ही नहीं चला। आरती अब तक मुझे बता चुकी थी कि वो नौजवान यानी आकाश और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और फिर वही लोगों की कानाफूसी, माता पिता की हिदायतें और अब उनके साथ साथ आने पर पाबंदी लग चुकी थी। उस दिन तो ये सब बताते बताते आरती रोने लगी थी। मैंने उसे समझाया, देखो तुम एक कामकाजी लड़की हो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा, अमूमन हर मध्यम वर्गीय घर में यही होता है, पर अगर इस समय तुमने सही फैसला नहीं लिया तो जिंदगी भर इस बात पर पछताओगी। मैंने भी सोच लिया था कि जो गलती मैंने और अजय ने की थी इन दोनों को नहीं करने दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी इन्हें एक करने की। कुछ दिनों से आरती दिखाई नहीं दी थी, मुझे चिंता हो रही थी और अपनी बेवकूफी पर खीज भी आ रही थी। मैंने उससे उसका फोन नंबर तो लिया ही नहीं था और ना ही अपना नंबर उसको दिया था, कैसे पता चलेगा क्या हुआ है, कहीं बीमार तो नहीं है या कहीं बाहर चली गई है। इसी सब में आज करीब एक महीना हो चला था। अचानक एक दिन मैंने आकाश को अकेले जाते हुए देखा। इच्छा हुई कि उसे बुलाकर आरती के बारे में पूछूं, पर यह सोचकर रह गई कि पता नहीं क्या सोचेगा। इसके बाद भी कई दिन तक आरती दिखाई नहीं दी। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। एक दिन फिर मैंने आकाश को देखा। उसको देखते ही मैंने अपने किराएदार के छोटे से बेटे को, जो मेरे पास ही खेल रहा था, आकाश को दिखाकर कहा, जा बेटा उस लड़के को बुलाकर ला, कहना मेरी आंटी बुला रही है। थोड़ी देर में आकाश मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा, बैठो बेटा। उसकी प्रश्नवाचक निगाहें मुझसे कई सवाल पूछ रही थी। मैंने उसे ज्यादा इंतजार ना कराते हुए कहना शुरू किया, बेटा आकाश तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। दरअसल तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं आरती के जरिए तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत दिनों से आरती दिखाई नहीं दे रही है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए।
क्या वो

0: बीमार हैं? पहले तुम दोनों को साथ साथ आते देखती थी। क्या बात है? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? इतने सारे सवाल सुनकर और अपने नाम से किए गए संबोधन से आकाश हैरान था। आंटी, आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, और आरती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, बेटा, आरती और मेरा जो रिश्ता है वो शायद तुम नहीं समझोगे, पर बहुत दिनों से आरती को ना देख कर मैं चिंतित हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में है, और तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुमसे बात करना उचित समझा। आरती यहीं से आती जाती है, करीब करीब रोज ही मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी, इसलिए हम लोगों ने कभी अपने फोन नंबर आदान प्रदान करने की जरूरत नहीं समझी, इसीलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। आज तुम देखे तो लगा तुम तो सब कुछ जानते ही होगे। मेरी बातें सुनकर आकाश के चेहरे के भावों से लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, और मेरी बातों से उसे मेरे और आरती के संबंध का अंदाजा भी हो रहा था। धीरे से बोला, आंटी, आरती से तो मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। अब मैंने संजीदगी से आकाश से कहा, बेटा, जिंदगी में कई बार फैसला लेने में इतनी देर हो जाती है कि उसका परिणाम हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, और समय पर सही फैसला ना लेने की गलती का एहसास हमें सारी जिंदगी सालता रहता है। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या परेशानी है, पर अपने तजुर्बे से बस इतना जरूर कहूंगी कि अगर वाकई तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और रिश्ते में गंभीर हो, तो थोड़ी हिम्मत तो करनी ही होगी, वरना सारी जिंदगी इस दर्द, इस कसक को सहने को तैयार रहो। आकाश आश्चर्यचकित नजरों से मेरी ओर देख रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ मालूम है। बोला, आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत असमंजस में था कि क्या करूं। सच बात तो यह है कि आरती के घर वाले उसका संबंध कहीं और करना चाहते हैं, पर आरती उसका विरोध कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है वो, और मैं बस इतना कहकर आकाश चला गया। उसके जाने के अंदाज से लग रहा था कि वो निर्णय ले चुका है। कुछ दिनों बाद मैंने आरती और आकाश को साथ देखा। वे दोनों मेरी ओर ही आ रहे थे। पास आकर दोनों ने मेरे पैर छुए। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। देखकर लग रहा था दोनों एक हो चुके हैं। उनकी कृतज्ञता भरी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। शब्दों की जरूरत ही कहाँ थी। मेरी आंखें भी छलछला आई थीं। दोनों को इस तरह एक साथ देखकर बेहद सुकून मिल रहा था।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी ये कहानी, वो सांवली लड़की। कहानीकार थी नीरजा वर्मा। सखियों, बकरीद का त्योहार हमारे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा या कुर्बानी ईद भी कहते हैं, इस्लाम धर्म का ये एक प्रमुख त्योहार है। ये रमजान के पवित्र महीने के लगभग 70 दिन बाद इस्लामी कैलेंडर के जिला हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। सखियों, बकरीद पर्व का सामाजिक संदेश भी बहुत व्यापक है, अच्छा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं और प्रिय वस्तुओं का त्याग करके ही हम इंसानियत की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अमीर गरीब सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। कुर्बानी का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियाँ मना सकें। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कई गैर मुस्लिम दोस्त भी अपने मुस्लिम साथियों के घर सेवैयां और बिरयानी खाने जाते हैं। बकरीद सिर्फ जंतु की कुर्बानी का नाम नहीं है सखियों, असल कुर्बानी है अपने लालच, घमंड, झूठ और बुराई की कुर्बानी देना। त्याग, मोहब्बत और भाईचारे का यही पैगाम बकरीद को खास बनाता है।

सखियों, गर्मियों के तपते मौसम में हमें अपनी हरी भरी बगिया सबसे अधिक सुकून देती है। अब ये प्यारी सी बगिया आपकी बालकनी, गैलरी, छत, बरामदा कहीं भी सजी हो सकती है। आप क्रोटन्स पसंद करते हैं या रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे, सब कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। बगिया के पौधे बस आपका दुलार चाहते हैं और बदले में अपनी ताजगी, खुशबू और प्यार बिखेरते हैं। गर्मी आते ही धूप की तेजी से पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से लू के मौसम में भी ठंडी और हरी दिख सकती है ये बगिया। सखियों, गर्मियों में पौधों को पानी देने का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक का सही माना जाता है। और हाँ, पानी जड़ में ही दें, सुबह के समय पत्तों पर नहीं, क्योंकि पत्तों पर पानी धूप में लेंस का काम करता है, जिससे कि किरणें पत्तियों को झुलसा भी सकती हैं। पौधों की जड़ों के आसपास सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके, लकड़ी का बुरादा या घास बिछा दें। पेड़ों के ऊपर ग्रीन नेट लगाएं। छोटे पौधों को बड़े पौधों की छांव में रखें। गर्मी में सदाबहार, गेंदा, बोगेनविलिया, कनेर, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे पौधों को लगाना चाहिए। ये लू की गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। सखियों, पौधे भी इंसानों जैसे होते हैं, उन्हें भी गर्मी और सर्दी का एहसास होता है, इन्हें भी लू लगती है, प्यास लगती है। अगर पत्ते मुरझाते हुए, कुम्हलाते हुए दिखें, तो समझ जाएं कि इन्हें पानी का अमृत और छांव की दरकार है। पंछियों के लिए सकोरे में दाना और पानी रखना भी जरूरी है। इनका घर तो हमारी ये बगिया ही है ना। हमारी बगिया हमसे बहुत अधिक कुछ भी नहीं चाहती, थोड़ी सी देखभाल, प्यार और तेज धूप से बचाओ। घर की

सबसे प्यारी जीवंत जगह आपको बार बार अपने पहलू में बुलाएगी। अब महिला सभा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अपनी सखी सुनीता पाठक को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार है विजयलता पराशर, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है। इनके गाए कुछ लोकगीत आज आप सुनेंगे। आरंभ में ये दादरा

0: इस देवी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे विजयलता पाराशर के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवल्यू।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर।

0: इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे वैशाली मोघे के गाए कुछ भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत दिल धड़कने दो। इस फिल्म का ये गीत है। यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और साथियों ने इसे गाया है। जावेद अख्तर ने इसे लिखा है, शंकर एहसान लॉय ने धुन बनाई है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि परिवार और प्रियजनों का हालचाल पूछते रहें और इन मुश्किल दिनों में संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिनमें 199 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का नाथुला दौरा रद्द करना पड़ा था। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें करीब 2,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि योग और खजुराहो दोनों ही हमारी महान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।
1: योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्यप्रदेश सरकार घर घर योग हर व्यक्ति निरोग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है।
0: इस बार 21 जून का मुख्य योग कार्यक्रम कोलकाता में होगा, जिसकी थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। इसमें इसरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। शाम को नृत्य नाटिका, लोक गायन और नौसेना बैंड की सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉ. मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरे आरोपी पुणे के कोचिंग फैकल्टी तेजस शाह को भौतिक विज्ञान के लीक प्रश्न मिले थे। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 49 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में तो पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आज भी निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि 29 मई से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है और जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून भी दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में ग्रीष्मकालीन सर्वे में पूर्व और पश्चिम वनमंडल में कुल 148 गिद्ध दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की पुलिस में कंप्यूटर संवर्ग के 89 पदों पर भर्ती के लिए सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 से 9 जून तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के रांझी स्थित परेड ग्राउंड पर होगी। पन्ना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 मई से 2 जून तक जिले के 191 तीर्थयात्री श्री द्वारका सोमनाथ जी की यात्रा करेंगे और आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित बैठक में आगामी सिंहस्थ के दौरान जिला चिकित्सालय में 300 अतिरिक्त बेड की मांग शासन को भेजे जाने पर चर्चा की गई। इस बुलेटिन पे इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: अब दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
5: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट

0: कक्षा के लिखे हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।

0: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल कर रहे हैं। पहला पत्र शामिल किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान की। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। सुनना चाहा है दिल है तुम्हारा फिल्म का टाइटल ट्रैक, अलका याग्निक और कुमार सानू और साथ उदित नारायण की आवाज है। समीर ने लिखा है, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया।

अगला अनुरोध है सलामी फिल्म के लिए। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है, समीर का लिखा, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया है। सुनना पसंद किया है देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की, घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया की, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोत्रा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गाधीबाग अकोला से महेश कटनकर और वैशाली कटनकर, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया, डर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने से गाया है, गीतकार आनंद बशे, संगीतकार शिवहरी।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की पसंद अपने भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले। सुनना पसंद किया है सलाम नमस्ते का टाइटल ट्रैक, कुणाल गार्नर जावाला और वसुंधरा दास ने इसे गाया है। जयदीप साहनी का लिखा है, विशाल शेखर की धुन है।

सलाम नमस्ते फिल्म का ये गीत था। कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास ने इसे गाया था। हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता दें हमारा पता। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। पता एक बार फिर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक श्यामला हिल्स आकाशवाणी भोपाल, पिन कोड है 462002। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिसमें 199 छात्राएं शामिल हैं। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल के भारत भवन में आज सदा निराश समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। एक अन्य आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पारा दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5 बजे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे प्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे नाटक सुनिएगा उपेक्षित। लेखक घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुतकर्ता होंगे चित्रेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागरजनी में पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया रागेश्वरी राग आप सुनेंगे। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज का आकर्षण होगा फरमाइशी लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। हमारी ये सभा भी यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए। इस बीच हमारा प्रसारण डीटीएच

जनसाथी डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय योग परंपरा को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर स्वस्थ, जागरूक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत आने वाले 16 जिलों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके खातों में 311,64,00,000 से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में जमा कराई जा चुकी है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,36,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में अव्वल है। अब तक 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के अंतर्गत प्रथम चरण में विद्यार्थियों द्वारा पंजीयन एवं प्रवेश प्रक्रिया में सहभागिता की जा रही है। अभी तक स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में कुल 2,10,460 आवेदनों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा 3 से 5 जून 2026 तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आमजनों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत लाइनों, वितरण ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युतीय उपकरणों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कुछ लोग चले जाते हैं मगर विचार अमर हो जाते हैं। जो देश के लिए जिए हों वो दिलों में घर कर जाते हैं। सपनों से जिसने भारत को नई पहचान दिलाई, ऐसे महान नेता को आज हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। युववाणी कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सौम्या शिंदे का प्यार भरा नमस्कार। हर शाम की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी बातें, नई जानकारियाँ और ऐसे विषय जो हमें अपने देश, समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाते हैं। आज का दिन बहुत विशेष है। 27 मई का दिन हमारे देश के इतिहास में एक भावुक स्मृति के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी विचारक, लेखक और ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपनों को दिशा देने का काम किया। उन्होंने उस भारत की कल्पना की थी जो शिक्षा, विज्ञान, लोकतंत्र और एकता के आधार पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। नेहरू जी का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता स्वरूप रानी नेहरू एक सरल और संस्कारी महिला थी। बचपन से ही नेहरू जी की पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी और उन्हें प्रकृति, इतिहास और विज्ञान में भी विशेष रुचि थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन विदेश में रहकर भी उनका दिल भारत के लिए धड़कता रहा। उन्होंने देखा कि किस तरह अंग्रेज भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने कई बार जेल यात्राएं की, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। कहा जाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने देश के लोगों के लिए सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखे। नेहरू जी ऐसे ही नेता थे। जब भारत आजाद हुआ, तब देश गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और कई समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। उन्होंने बड़े बड़े बांधों, फैक्ट्रियों और वैज्ञानिक संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उनके प्रयासों से IIT, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और कई विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उनका विश्वास था कि यदि देश को मजबूत बनाना है तो युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना होगा। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। वे मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं और यदि बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दिए जाएं तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। यही कारण है कि उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी ने एक बार कहा था, नागरिकता देश की सेवा में निहित है। यह बात हमें सिखाती है कि केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनके विचारों को याद करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देश को नई दिशा दी। देशभक्ति, एकता और अपने वतन के प्रेम के लिए भावना हमेशा उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। अब इसी खूबसूरत भावना को और करीब से महसूस करते हैं एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत के साथ। गीत के बाद आगे चर्चा करेंगे भारतीय लोकतंत्र और युवाओं की भूमिका के बारे में।

जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होती है तो लोकतंत्र और भारतीय राजनीति की चर्चा अपने आप ही शुरू हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ की जनता है। आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एकजुट रखना। अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं वाले इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने लोकतंत्र और संविधान के में विश्वास रखते हुए देश को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। हर दिन हमें हजारों खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन हर जानकारी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमें जागरूक नागरिक बनना होगा और किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जांचनी होगी। युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। यदि हमारे युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। नेहरू जी भी युवाओं पर बहुत भरोसा करते थे। उनका मानना था कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे ऊंची ऊर्जा है। इसलिए युवाओं को राजनीति, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भाग लेना चाहिए। राजनीति का मतलब केवल नेताओं की बहस नहीं होती। राजनीति का संबंध हमारे जीवन की हर सुविधा से जुड़ा होता है, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और रोजगार तक। इसलिए देश के हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। आज कई युवा स्टार्टअप

आज जरूरत है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और देश हित को सबसे ऊपर रखें। लोकतंत्र की ताकत केवल सरकार से नहीं बल्कि देश के जागरूक नागरिकों और युवाओं से मिलती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज हम सभी की है। तो आइए देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को महसूस करते हैं और इस भावुक गीत के साथ उन्हें याद करते हैं। गीत के बाद बात करेंगे शिक्षा, विज्ञान और युवाओं के सपनों की।

देश की प्रगति की बात हो और शिक्षा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आज शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज का समय प्रतियोगिता का समय है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और कौशल दोनों जरूरी हैं। लेकिन केवल किताबों की पढ़ाई ही काफी नहीं है, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी सीखना चाहिए। नेहरू जी वैज्ञानिक सोच को बहुत महत्व देते थे। वे चाहते थे कि भारत अंधविश्वास से ऊपर उठकर विज्ञान और तर्क की राह पर चले। यही कारण है कि उन्होंने वैज्ञानिक संसाधनों और रिसर्च सेंटर की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया। आज भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारे देश ने चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे मिशनों के जरिए पूरी दुनिया में अपनी क्षमता साबित की है। यह सब शिक्षा और विज्ञान की ताकत का ही परिणाम है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छी नौकरी पाना ही नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, दया और संवेदनशीलता जैसे गुणों को भी अपनाना चाहिए। आज डिजिटल युग में पढ़ाई के तरीके बदल गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घर बैठे नई चीजें सीखी जा सकती हैं। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को आसान बनाया है। लेकिन तकनीक का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर हम पूरा समय केवल सोशल मीडिया और मनोरंजन में बिताएंगे तो यह हमारे समय और क्षमता दोनों का नुकसान करेगा। इसलिए हमें इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी करना चाहिए। किताबें आज भी हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी किताब इंसान की सोच बदल सकती है। नेहरू जी स्वयं भी पढ़ने और लिखने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का सुंदर वर्णन किया है। आज जरूरत है कि हम शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम ना समझें, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का साधन माने। शिक्षा और सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। आज जब हम विकास और आधुनिकता की बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है, पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति केवल हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन ही हमें स्वस्थ जीवन देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रकृति से बेहद प्रेम करते थे। वे मानते थे कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता संतुलन और संवेदनशीलता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बड़े विकास कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी जोर दिया था। लेकिन आज तेजी से बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने पर्यावरण के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है, मौसम बदल रहे हैं और प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी, जैसे पानी की बचत करना, बिजली का सही उपयोग करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना।

आज के युवा इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि हर व्यक्ति साल में केवल एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारा वातावरण काफ़ी बेहतर हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि सुरक्षित पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दे सकता है। इसी सकारात्मक सोच और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेरणादायक गीत जो हमें जीवन और उम्मीद का

आज के समय में एक और महत्वपूर्ण विषय है युवाओं का मानसिक और सामाजिक विकास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई युवा तनाव, चिंता और अकेलेपन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई बार प्रतियोगिता और असफलता का डर युवाओं को निराश कर देता है, लेकिन यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी हैं। कई बार प्रतियोगिता और असफलता का डर युवाओं को निराश कर देता है, लेकिन यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही जरूरी हैं। असफलता हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की सीख देती है। नेहरू जी हमेशा सकारात्मक सोच रखने की बात करते थे। उनका मानना था कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, खेलकूद और योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने मन की बात अपनों से साझा करनी चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की असली कुंजी है। इसके साथ साथ हमें समाज के प्रति भी संवेदनशील बनना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज में सकारात्मकता फैलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हर युवा अपने जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करे तो पूरा समाज बदल सकता है। आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता। घड़ी अब इशारा कर रही है कि विदा लेने का समय हो गया है। आशा है कि आज का यह विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं से जुड़े विचारों ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। अपने देश से प्रेम करें, अपने कर्तव्यों को समझें और हमेशा सीखते रहने की आदत बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं सौम्या शिंदे आपसे लेती हूँ विदा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें। नमस्कार।

0: अभी आप आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में थोड़ी ही देर में लेते हैं एक अंतराल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसानवाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से। आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की

और अब सुनिए सुनिधि चौहान को फिल्म धूम 2 से समीर के लिखे हुए बोल हैं, जिसे संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

और अब सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। ये गीत आतिफ असलम ने गाया है, अरशाद कामिल के बोल है और इसे संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

और अब अंत में सुनिए जिस्म टू से ये गीत गाया है के और श्रेया घोषाल ने, जिसे लिखा है आर्को प्रावो मुखर्जी और मुनीश माखीजा ने, और संगीत भी है आर्को प्रावो मुखर्जी का।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान लागू इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2,000 लोगों ने भाग लिया। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे मोहाली में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा

कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 6:11 और 14 सेकंड। आप हैं सदाबहार गीत में रूपा के साथ। जी हाँ, कुछ फिल्मी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं। कहाँ पर? आपके ही पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। तो चलिए सुनते हैं पहला सदाबहार नगमा धरती कहे पुकार के फिल्म से, मुकेश साहब और लता जी की आवाज में।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत रूपा के साथ। तो चलिए अगला गीत शामिल कर लेते हैं जल्दी से। ये है फिल्म इशारा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी साहब के स्वर में।

इसी के साथ विदा लेती है रूपा, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है इस चैनल पर। जी हाँ, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले संस्कृत में समाचार और फिर 6:30 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा कार्यक्रम। रूपा को विदा दीजिए, नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रतिवार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं पञ्चशताधिक पञ्चविंशतिसहस्रकोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्चन्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेषगहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अङ्गीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपनभङ्गप्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या अद्य षोडश वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरन्तरतायै त्रिंशदधिक पञ्चशतोत्तर पञ्चविंशतिसहस्रकोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्यसंस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचितमूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिममेधायाम् आधारिताः निर्मल आशासक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मल इति कृत्रिममेधाचालितः वास्तविकसमय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरणमञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिममेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारणप्रणाली तथा च नागरिकसंवादमञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिममेधायुक्तम् आपूर्तिश्रृङ्खलाप्रबन्धनतन्त्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिकप्रकरणमन्त्रिमण्डलसमित्या राज्यान्तर्गतखाद्यान्नपरिवहनव्ययस्य तथा उचितमूल्यापण विक्रेतॄणां लाभांशसीमायाः पूर्तये केन्द्रीयसहायतानियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत् वित्तपोषणप्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढनिर्णयः कृतः। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य भारतनिर्वाचनायोगेन प्रदत्तं मतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेषपुनरीक्षणं निष्पक्षस्वतन्त्रनिर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः 50+1 24-300 अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेषगहनपुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्यबागची इत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितम्, यासु गतवर्षे जूनमासे निर्वाचनायोगेन बिहारराज्ये विशेषगहनपुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत्। मुख्यन्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापिते निर्णयपत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये विशेषपुनरीक्षणाय आयोगम् अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्यपुनरीक्षणस्य पारम्परिकप्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानं अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदी सर्वान् आद्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णताप जनित कष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषक परिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेऽपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता ये पिपासित जनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमन्त्री सर्वानेतेषु कष्टकरदिनेषु परस्परं करुणाप्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर, अहिल्यानगरेभ्यः एतावता त्रयोदश आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉक्टर मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्रभेद प्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्य भूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजस हर्षद कुमार शाहः वर्तते, यः पुणे नगरस्य डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्, यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः, अंकीय संगणकाः, दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोक नगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीय विचारैः, नवोन्मेषेण, परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
2: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मंत्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य, अधिक सशक्तस्य, पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं 7:30 समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।

और अब अगली आवाज़ सुनिए अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की फिल्म तमाशा से। ये गीत लिखा है इरशाद कामल ने और संगीत है ए आर रहमान का।

और अब अगली आवाज़ सुनिए अरिजीत सिंह की खामोशियां फिल्म से सईद कादरी का लिखा हुआ गीत है और इसे संगीत से सजाया है जीत गांगुली ने।

और अब अगली आवाज सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुछराल की फिल्म गब्बर इज बैक से। मनोज यादव के लिखे हुए बोल हैं और संगीत में पिरोया है चिरंतन भट्ट ने।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए कनिका कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है एक पहेली लीला। इसके बोल लिखे हैं कुमार ने और इसमें संगीत दिया है डॉक्टर ज्यूस ने।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: यह आकाशवाणी का शुभ

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: आकाशवाणी

शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। शाम 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुन सकते हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10 बजे नाटक उपेक्षित प्रस्तुत होगा, जिसके प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र स्वरूप राजन और लेखक घनश्याम सिंह तोमर हैं। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट के गिटार वादन का राग होगा रागेश्री। अब कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 28 मई दिन गुरुवार की सभा में। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन और कल सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर नाटक डाकू बनते बनते प्रस्तुत होगा, जिसकी लेखिका हैं आशा शुक्ला और प्रस्तुतकर्ता जगदीश अधिकारी हैं। कल सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी और सुबह 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये थे कल सुबह 11 बजे तक आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। कल सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 12 बजे 2:30 और रात 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, जिसमें हम पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सिसकियां की दूसरी कड़ी प्रस्तुत होगी। कल दोपहर 1 बजे महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान रहेंगे। कल शाम 5:33, 6:30, 8:15 और रात 9:30 पर फिल्म संगीत प्रस्तुत होगा। शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा। पंडित समरेश चौधरी के ख्याल गायन का राग होगा गोरख कल्याण। इसी के साथ कल और आज की सभा के कार्यक्रमों का विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खजुराहो में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी।

है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि

0: फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन को बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। एक्ट्रेस तुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह को 29 मई तक CBI रिमांड पर भेज दिया है। CBI की टीम उसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करने गई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की नई भाषा नीति पर रोक को लेकर कोई भी दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में CBSE को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। CBSE की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें 2 भाषाओं का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15-16 जुलाई की तारीख दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। श्री जाधव ने घोषणा की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर श्री जाधव ने कहा कि
3: आज खजुराहो और छतरपुर केवल अतीत के प्रतीक नहीं बल्कि योग अध्यात्म और भारतीय परंपरा के और पुनर्जागरण के जीवित केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
1: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस MP पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो जाएगी। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के 2 कोचिंग संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में आज कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर विगत 10 वर्षों में यह सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में PM सूर्य घर योजना के तहत अब तक 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311,64,00,000 रुपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। इसमें खजुराहो

सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलना शुरू होगा और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं भोपाल स्थित अनुसंधान संस्थान 3 से 5 जून तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के 60 प्राध्यापक भाग लेंगे। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख रूपये के गबन का मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बाल श्रम रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक न होने की जांच करने और होने पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पेयजल समस्याओं की सतत निगरानी और हैंडपंप संधारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आगरमालवा में जिला स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। कटनी में IHSDP योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती में बने आवासों पर 8 अनाधिकृत कब्जों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। राजगढ़ में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर बढ़ाकर धान की बोली का लक्ष्य 1,50,000 हेक्टेयर किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व तम्बाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और IPL में अब से कुछ देर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वह शुक्रवार को गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने बारे सभी भैया बहनों को धर्मो की राम राम। और भैयाओ कैसे हैं आप? भैयाओ हम तो यही चाहते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। क्यों? क्योंकि भैया जय पड़ रही है गर्मी, जय टाइम पे भैया गर्मी से अपन को बचनो है। अब भैया गर्मी से बचवे के लाने हमें कछु उपाय भी करने पड़ेंगे, है ना? और भैया ये तो अपन जानते ही हैं कि अपो देश भैया सब चीजें की एक से एक जुगाड़ कर लेते हैं। यानी कि भैया कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं हमारे भैया कि जिनकी सोच देख के ही बनते हैं। तो भैया आओ जा समय हम गर्मी के समय में अपने स्वास्थ्य को अगर हमें अच्छो रखने हैं, स्वस्थ रहने हैं, मस्त रहने हैं, तो भैया आओ हम एक तो भैया

दोपहरिया में, यानी कि भैया 12 बजे से और 4 बजे तक, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम जो घाम पड़ रही है ना तेज, वह घाम से बचने। और भैया जो घाम से बच जाओगे तो भैया अपने शरीर में यानी कि कोई भी रोग होवे से अपन बच सकते हैं। क्योंकि भैया 12 से 4 की जो तेज एकदम घाम पड़त है सीधी धरती पे, वो भैया बहुत ही एकदम बहुत एक गर्म होते हैं। और भैया उसी समय चलत है गर्म लू। तो भैया एक तो गर्म लपटिया और भैया दूसरी बात आउत है तेज घाम। तो भैया दोनों तरफ से अपन को थपेड़े पड़त हैं, एक तो घाम के और एक लपट के। इसलिए भैया अगर हमें काम है, क्योंकि देखो काम तो जानू ही पड़ेगा और काम दिन में ही होते हैं, तो भैया हम जब भी घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले हम ना खाना खा पी के निकलें। दूसरी बात, अपन अपने सिर पे गमछा बांध लें और भैया नाक कान मुंह सब बांध लें, जिससे कि गर्म जो लपट चल रही है वो अपने मुंह के अंदर ना जाए। दूसरी बात भैया, आँखन पे अपन रंगीन चश्मा लगा लें, जिससे कि भैया सीधी धूप की जो किरणें पड़त हैं वो अपनी आँखन पे ना पड़े, जिससे कि अपनी आँखों पे किसी भी तरह से गर्माहट हवा या घाम को कोई असर आए। और भैया अपन एक पानी की बोतल लेके जरूर चलें, संग में पानी लेके चलेंगे तो कहीं भी अपन ठाड़े होते हैं प्यास लगते हैं तो अपन पानी पी सकते हैं। और भैया जगह जगह पे अपने सब भैया ने आजकल भैया शहरन में कई जगह पे प्याऊ बना रखी हैं, अपन बा प्याऊ से अपन बोतल भी भरत रहें। और दूसरी बात, अपन पानी भी पियत रहें। तो भैया ये बात, पानी जब तक अपने शरीर में पानी अपन पियत रहेंगे तो पानी की कमी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर पानी की कमी भई सोई अपन खो बीमारियों ने पकड़ो। क्योंकि भैया गर्मी में जब पसीना निकलत है तो वो पसीना कहाँ से निकलत, अपने शरीर में से। और शरीर में जब पानी की पूर्ति होत रहेगी तो भैया बिल्कुल भी अपने लाने किसी भी तरह से रोग यानी कि कोई भी बीमारी से अपन बच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपन पानी पियत रहें। दूसरी बात, अपन भैया जा समय गर्मी पड़ रही है तो आम को पना है ना, नींबू की सिकंजी है, इमली को पना है, ये सब चीजन को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया अपन प्याज की गांठ को छील के अपनी जेब में रख के चल सकते हैं, प्याज खाते रहें जा गर्मी में, क्योंकि प्याज से भैया लू नहीं लगते हैं। तो इसलिए प्याज को इस्तेमाल करें, और कहीं अगर लग भी जाते तो प्याज को अपन भैया थोड़ो सो अपन सिलबट्टा पे घोंट के बाय और अपन तलवों पे लगा सकते हैं, जिससे कि लू को असर बहुत जल्दी कम होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं भैया, जो कि सब अपन जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि भैया सुनत रहते हैं तो भैया हाल की हाल दिमाग में बनी रहते हैं। क्या है भैया, सही कह रहे ना? तो भैया देखो, जा समय अपो कुआ है, बावड़ी है, तालाब हैं, नदियां हैं, क्योंकि पानी बहुत कम हो जाते हैं और उन पे भैया पानी कम होबे से अपन उनकी भैया गहरीकरण भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि भैया देखो, अपन हमेशा सरकार के ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि अपाओ गांव अगर अपन को स्वच्छ हरो भरो और अपनों को वातावरण एकदम स्वच्छ रखने हैं तो भैया अपन सब भैयन को एक दूसरे को मिलके अपन जब भी टाइम मिल जाए सुबह ही सुबह चले जाएं या शाम को चले जाएं तो वहाँ पे भैया अपन है ना गहरीकरण भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपन जगह जगह पे वहाँ पे गड्ढा खोद के और उन्हें तैयार कर लें, खाद और मिट्टी डाल के बिल्कुल एकदम तैयार कर लें और जैसे और पौधरोपण की अपन तैयारी कर लें। जैसे ही भैया अपन पानी गिरन लगे, अपन को लगन लगे कि हाँ
अब बारिश आ गई है, पानी गड्ढा में पी चुको है, अच्छे से भैया नमी आ चुकी है, सोई अपन बा में पौध रोपण कर दें। और पौध रोपण के बाद भैया बाकी चारों तरफ से बागड़ कर दें, या तो पत्थर से कर दें, या भैया कोई भी जाली जो आउत हैं बाग को अपन गोल जाली बना के और बाय अपन बा में जमीन में गाड़ दें। ऐसो करवे से भैया एक तो पशुअन से अपो पौध बच जाओगे, है ना, और अपन उनकी क्यारी बना दें, जैसे अपन ट्यूबवेल के आसपास लगा रहे हैं या कुआ के आसपास लगा रहे हैं या हेडपम्प के आसपास लगा रहे हैं, तो भैया वो पानी जब अपन भरत हैं या पियत हैं या जो भी फैलत है वो पानी नाली के द्वारा उन पौधन में जात रहे वो। तो एक तो भैया वहाँ पे पौध बड़े होंगे, जब पेड़ बड़े होंगे तो भैया छायादार होंगे, अगर वहाँ में फलदार लगाए हैं तो भैया फल भी लगेंगे तो अपन को फल भी मिलेंगे, फूल किए तो फूल भी मिलेंगे और छाया तो मिलेगी मिलेगी। और आवे वाली जो पीढ़ी है हमारी भैया वो बहुत खुश होगी, वो ये कहेगी कि हमारे बाबा दादा पर दादाओं ने देखो कितने अच्छो हमें वातावरण दो कि हमारे गांव में आज चारों तरफ हरो भरो बनो भाव है, चारों तरफ पेड़ पौधा लगे हुए हैं, जिससे कि भैया अपन को एक तो शुद्ध वायु मिलेगी यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जिसके लाने भैया डॉक्टर साहब हमेशा यही कहते हैं कि भैया सुबह सुबह की शुद्ध वायु लें, जो शुद्ध वायु अपने शरीर में जाएगी वो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखत है। जाके लाने आप देखत हैं कि कितेक बुजुर्ग लोग हैं, जितेक बीमार लोग हैं, वो सुबह सुबह भैया टहलत भाई मिलेंगे, घूमत भाई मिलेंगे, वो क्यों मिलेंगे भैया, क्योंकि भैया उनको शुद्ध वायु की जरूरत है। इसलिए भैया हम भी आपसे यही कहेंगे कि जब पेड़ पौधा पे गांव के चारों तरफ हरो भरो होगो तो वो शुद्ध वायु एकदम ताजा तरोताजा बनी रहेगी और हमें किसी भी तरह से किसी पे भी कोई बीमारी एकदम नहीं आवेगी। तो भैया जब बात को ध्यान रखने कि अपन को स्वस्थ रहने हैं तो अपन को लू से बचने हैं तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। इस समय भैया देखो खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, आम, है ना, और खीरा, मतलब ये सब चीज़ें ऐसी आ रही हैं भैया जिनको अपन उपयोग करके अपने शरीर की पानी को कमी को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो भैया पोषक तत्व होते हैं जो अपने शरीर के लाने जरूरत होते हैं वो भैया इन खरबूजा तरबूजा में, खीरा में, ककड़ी में मिल जाते हैं। तो इसलिए भैया जे अपन समय समय पे अपन खात पियत रहें, अपने मोड़ा मोड़ियों को खिलाएं, अपने बुजुर्गों को, अपने घर के जितने भी उनको खिलाते रहें, है ना। और भैया जब ये अपन चीज़ें अपन खात रहेंगे पियत रहेंगे तो अपन भैया स्वस्थ बने रहेंगे, क्योंकि भैया देखो अपाओ स्वस्थ रहे वो बहुत ज़रूरी है। अब आप ये बात समझ रहे होंगे कि अपन अगर स्वस्थ रहेंगे तो भैया अपाय लाने किसी भी तरह से कोई भी काम में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि भैया काम में बाधा तभी आते जब अपन अस्वस्थ हो जाते, है ना। तो भैया स्वस्थ रहने को सबसे बड़ा उपाय यही है कि अपन भैया सुबह से लेके और रात तक अपन को जब भी मौका लगे अपन कुछ ना कुछ खात पियत रहें। भूखे रहने से भैया लू लगवे को डर बहुत जल्दी होते हैं, तो अपन को भूखे नहीं रहने हैं, है ना। और भैया आओ जैसे कि अपन को किसी भी तरह से कोई भी अगर बीमारी रोग लग जाते यानी कि लू लग जाऊ थे तो बाको भैया तुरंत अपने पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और भैया वहाँ पे जाके तुरंत अपने सलाह लें डॉक्टर से। ये नहीं कि अपन झोला छाप डॉक्टर के पास पहुँच गए और भैया लू लग गई है तो बाने भैया लगा दें इंजेक्शन और गोली दवाइयाँ दे दें उल्टी सीधी और भैया वो खा के अपन बीमार और अधिक पड़ सकते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं आउत हैं भैया और फिर अपन खो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जानो पड़त है और वहाँ से भैया छुट्टी भी रेफर भी कर देते हैं कई बार, है ना।
तो इसलिए भैया अपन हमेशा अपई आशा कार्य करता है।

0: अगर कोई गर्भवती महिला है तो भैया हमेशा एक कार्ड बनवाएं और उससे समय समय पर जानकारी लेते रहें और भैया अपनी महिला की जांच करवा उतरें, क्योंकि भैया आशा कार्यकर्ता पर सरकार ने रख रखी है जिससे कि वो हमेशा जांच करत रहते हैं। कोई भी अगर कमी पेशी होता है तो आयरन की कमी होता है तो भैया वो गोली दवाई भी देते हैं और समय समय पर बताऊत रहता है कि भैया जे चीजन की कमी है या जे पोषक तत्वन की कमी है तो इन चीजन को हरी साग सब्जी पत्तीदार खाते रहो। तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि अपन खो जा गर्मी से लू से बचवे के लाने का करने है ना। और भैया हमारे सुन रहे हैं चौपाल पे बैठे भाई है ना ये कार्यक्रम। भैया देखो हम तो जा कार्यक्रम के माध्यम से अपने भैयन को रोजी ना कोई ऐसी चर्चा करत रहते हैं जिससे कि हमारे भैया सुने और भैया हमारे जैसे लाभ लें। अब भैया देखो जब अपन बीमारी की बात कर रहे थे तो हम आज आपको एक बात बताएं कि भैया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि भैया आयुष्मान जो कार्ड है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा चलाओ जा रहा है। जहां में कहा है जहां में भैया भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और कमजोर परिवार को 5 लाख तक को मुफ्त इलाज प्रदान करत है। यह योजना गंभीर बीमारियों के लाने माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल कवर करत है। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक को निशुल्क इलाज करा सकत है। यानी कि भैया एक परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति है तो बाको इलाज भैया प्रति वर्ष 1 साल के अंदर अंदर 5 लाख तक को इलाज निःशुल्क यानी कि मुफ्त में होते हैं। जय योजना के अंतर्गत हम किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में पैसे देवे की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि भैया जा में अपन को 1 रुपया भी नहीं देनो। जैसे कि अस्पताल में भर्ती होवे को खर्च भर्ती होवे से लेके और दवाइयाँ मेडिकल टेस्ट डॉक्टर फीस और डिस्चार्ज के बाद 15 दिनों तक को चिकित्सा खर्च जा में शामिल रहे थे। यानी कि अपन डिस्चार्ज हो गए और जो दवाइयाँ दी गई हैं वहाँ तक भैया जा में खर्चा शामिल करोगा वह। तो भैया जा में कौन यानी कि भैया अपन 70 वर्ष तक या उससे भी अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी जा योजना में शामिल करोगा यानी कि सभी को शामिल करोगा वह जामे। ऐसा नहीं है कि 70 साल के बाद नहीं होगा। नहीं भैया सबको शामिल करोगा वह जामे छोटे से लेके और बड़े तक। कोई भी भैया जा कार्ड को उपयोग पूरे भारत में किसी भी राज्य के पंजीकृत अस्पताल में इलाज के लाने करो जा सकत है। अपन कहीं भी रह रहे हैं और वहाँ पे भैया छोटी जगह वहाँ नहीं हो सकत इलाज अपन बड़ी जगह पे जाके वहाँ को इलाज करा सकते हैं है ना। जामे भैया पात्रता कौन रखते है भैया जामे पात्रता एक तो सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के अनुसार सूचीबद्ध जो गरीबी और वंचित परिवार में आउट है ना जो झोगी झोपड़ियों में भैया रहते हैं। भैया ऐसे लोगों को ये आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने दव है जिससे कि हमारी सरकार जा कार्ड के माध्यम से सभी गरीबों के लाने मुफ्त इलाज देव थे। तो भैया है ना काम की चीज। तो भैया अगर ये कार्ड आपने नहीं बनवाओ है तो ये कार्ड आप बनवा लें है ना और जा कार्ड को बनवा के अपने पास रख लें और भैया कभी भी कोई बात हो जाए तो जा कार्ड के माध्यम से हम अपाओ इलाज करा सकते हैं 5 लाख तक को। तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि जा कार्ड को कितनो महत्वपूर्ण काम है। तो भैया अपन लू से बात कर रहे थे बचवे की। तो भैया देखो हम आपको आज लू से बचवे के लाने एक भेंट वार्ता लाए हैं जाको विषय है लू से कैसे बचें और जाकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गिरीश दुबे जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपाय भैया समर्थ अग्रवाल जी। तो सुनत है जो भेंट वार्ता।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, हमारे साथ आज डॉक्टर गिरीश दुबे हैं। आप शासकीय श्रीमंत विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय में फिजिशियन हैं और ग्रीष्म ऋतु के दिन चल रहे हैं और हीट वेव्स बहुत ज्यादा है, लू का प्रकोप बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर, ऐसे में हमारे सुनने वालों को और आम इंसान को इस ग्रीष्म ऋतु में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
2: सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम से जुड़ा।
1: जी,
2: जैसे कि हम सभी जानते हैं ग्रीष्म कालीन चल रहा है और इसमें भी अभी जो दिन चल रहे हैं 9 तपा के चल रहे हैं।
1: जी,
2: तो मेरी सभी से यही अपील है कि ज्यादा धूप में ना निकले।
1: जी,
2: और प्रयास करेंगे जो भी हमारे काम है सुबह अपना अर्ली मॉर्निंग ही निपटा लें।
1: जी,
2: 12 से 4 तक तो अवॉइड करें बाहर जाना।
1: जी,
2: और दूसरा मेरी सलाह रहेगी कि पानी की मात्रा अधिक से अधिक लें,
1: लिक्विड डाइट बनाएं अपनी।
2: ये हाँ, पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें और अपने जैसे कि आजकल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी आते हैं, ORS बोलते हैं।
1: जी,
2: ठीक है, उसका सेवन भी ज्यादा लें और जो भी हमारे ऋतु के हिसाब से फल आते हैं उनका सेवन ज्यादा करें।
1: जी, तो ये तो हुई डॉक्टर साहब प्रिकॉशन। अगर किसी को लू लग जाती है तो उसे आप तक पहुंचे, मतलब चिकित्सा के केंद्र तक पहुंचे, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो या मेडिकल कॉलेज।
2: यदि किसी को लू लग जाती है, फीवर आ रहा है, दस्त लग रहे हैं, तो तुरंत अपने जो भी पास में हेल्थ सेंटर है वहां जाकर संपर्क करना है।
1: घर पर, और कई लोग नीम हकीम खतरे जान को स्वतः डॉक्टर बन जाते हैं, वो कितना गलत है?
2: अब एक्चुअली इसमें बात ऐसी है भाई साहब कि कई बार पेशेंट को लू लग जाती है, किसी किसी मरीज को तो इतने ज्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं कि इसमें पानी की कमी आ जाती है।
1: जी,
2: और जब पानी की कमी होती है कई बार किडनी भी के ऊपर भी असर आ जाता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एक बार डॉक्टर से मिलकर सलाह करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाए।
1: एक कुछ घरेलू नुस्खे जो कहते हैं दादी के नुस्खे, जैसे हम पुरातन काल से चले आ रहे हैं, प्याज का उपयोग जिम में रखते हैं, ये कई बार कहा है, प्याज का सेवन बढ़ाएं, और लिक्विड फल तो आपने बोला ही है, चाहे वो सब्जी के तरीके से हो, टमाटर का गर्म मात्रा बढ़ाते हैं, पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, सिर पे गमछा बांधते हैं, फुल बाकी शर्ट पहनते हैं, ये सब भी लू से बचने में प्रभावशाली है वाकई में विज्ञान की दृष्टि से?
2: नहीं, जैसे सर पे जो हमारे बड़े बूढ़े कर गए हैं तो ऐसा तो नहीं कि सब चीजें गलत हैं।
1: जी,
2: तो कहीं ना कहीं ये कारगर और असरगार भी है।
1: जी, और प्याज का प्रयोग जेब में रखने का?
2: देखिए, ये तो अपनी मान्यता है।
1: जी, प्याज के सेवन के मोड में अगर बात करें, उसको सेवन करते हैं तो वो फायदेमंद है इस समय?
2: जी, बिल्कुल फायदेमंद।
1: हाँ, मतलब चलिए जेब में रखना एक परंपरा हो सकती है, लेकिन उसका ग्रहण करना हमारी विज्ञान की दृष्टि से और गर्मी से बचने के लिए प्रभावशाली है।
2: जी,
1: किसी खास बात का जिक्र करना चाहें डॉक्टर साहब इस समय?
2: मेरी सलाह तो यही है कि ज्यादा धूप में ना निकले, पानी का सेवन ज्यादा करें।
1: जी जी, तो डॉक्टर गिरीश दुबे जी, आप शासकीय विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय में आप सहायक प्राध्यापक फिजिशियन हैं, और इन्होंने जो सुनने वालों श्रोताओं से हम कहेंगे, सर ने, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है, इसका अगर हम पालन करेंगे तो हम ग्रीष्म ऋतु और इस लू के थपेड़े से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: भैया। अबे अपन सुन रहे थे जो भेंट वार्ता, जाको विषय है तो लू से कैसे बचें, जाकि जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गिरीश दुबे जी, और इनसे बातचीत करी हती अपे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल जी ने। तो भैया देखो कितने अच्छी बातें बताई है ना, और जो जानकारी सुन के भैया भी समझ गए होंगे कि भैया अपन को का उपाय करने हैं है? देखो भैया अपनी कोशिश तो यही है, और भैया अब हम बात करें आपसे कि भूमि के अच्छे स्वास्थ्य के लाने मिट्टी को परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण कदम होते हैं, जहाँ से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि की सटीक जानकारी दी जाती है, उचित उर्वरकों की मात्रा तय कर सकत है, जहाँ से पैदावार बढ़त है और लागत भी कम होत है। तो भैया फसल कटाई के बाद हम मिट्टी को नमूना ले सकते हैं और खेत में रासायनिक खाद या कीटनाशक डालवे से पहले नमूना लें, जैसे कि खेत में भैया 8 से 10 जगहों का चयन कर लें है ना, और भैया अपन है ना मेड़न से या पेड़ की छांव, पेड़ की यानी कि नीचे जो छाया पड़ता है वहां से भैया अपन क्या मिट्टी ना लें। तो भैया उस जगह से लें जिसकी सतह से भैया पहले तो अपन बाकी घास फूस या कंकड़ जो भी है वो साफ कर दें, और कुदाल या खुरपी की मदद से भी आकार या कि 6 इंच लगभग गहरो और 1.5 सेंटीमीटर गहरो गड्ढा खोदें, है ना। तो भैया भी आकार को अपन को गड्ढा करने हैं और 1.5 सेंटीमीटर तक गड्ढा खोदने हैं। सभी स्थानों से अलग अलग अपन मिट्टी ले लें, लगभग 1 किलो मिट्टी हो जाए तो बाय अपन साफ पॉलीथिन या कपड़े पर रखें, है ना, और उसे अच्छे से मिलाएं सबरी मिट्टी को आंतन से। भैया 4 भागों में बांट लें और 2 विपरीत भागों की मिट्टी रख लें और बाकी 2 हटा दें। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि लगभग 0.5 किलो मिट्टी ना बच जाए। जा मिट्टी को वर अपाओ भैया पोटली बनाएं एक तो कपड़े की, और बामे भैया अपन बामे अपाओ खेत को नंबर, खेत की पहचान और बोई जावे वाली फसल, और अपाओ नाम विवरण व थैली पर लिख दें पूरी, है ना। और इसे अपने नज़दीकी कृषि विभाग की प्रयोगशाला या कृषि विज्ञान केंद्र में भेज सकते हैं। तो भैया केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत आप मुफ्त या बहुत कम शुल्क में जांच करवा सकते हैं। अब आप समझ गए होगे भैया, है ना, काय भैया सही कह रहे हैं ना। तो भैया अपाओ जा समय मिट्टी परीक्षण जरूर करा लें, जिन भैया ने नहीं करा हुआ है तो वो करा के और जा बात की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि भैया अपन अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी मिट्टी को बंजर बना रहे हैं। तो मिट्टी को बंजर या भैया अपन दूषित ना करें, पोषक तत्वन की कमी ना करें, उससे पहले अपन मिट्टी परीक्षण कराएं, और जिन पोषक तत्वन की कमी है उसके लाने भैया अपन देसी खाद है बाको उपयोग करें, जैविक खाद है भैया, ये सब चीज़न को अपन उपयोग करेंगे तो अपनी भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, है ना, और पोषक तत्व बढ़ेंगे, अपाओ जो उत्पादन होगो वो अनाज भैया एक अलग बाको दाम मिलेगो। तो भैया अपन अब चर्चा को झाई रोकत भय आपको सुनवा रहे हैं जो भेंटवार्ता, अधिक उत्पादन हेतु भूमि का सुधार कैसे करें, जाकि जानकारी दे रहे हैं श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी, और इनसे बातचीत करिए अपाई भैया एस एस चौधरी जी ने। तो भैया सुनत हैं जहाँ में जी का जानकारी दे रहे हैं।
3: किसान भाइयों, हम जो भी फसल लेते हैं अपनी जमीन से उसकी उर्वरता बहुत अच्छी होना चाहिए। यदि भूमि हमारी अच्छी है तो हम लगातार उत्पादन लेते रहते हैं और हमारी पैदावार बढ़ती रहती है। लेकिन लगातार उत्पादन लेने और भूमि का परीक्षण न कराने, साथ में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं होने की वजह से कभी कभी मिट्टी खराब हो जाती है, लबड़ी हो जाती है, क्षारी हो जाती है, अम्ली भी हो जाती है, तो ये मिट्टी फिर हमें अच्छा उत्पादन देने में उतनी सक्षम नहीं रहती है जितना हमको उत्पादन मिलना चाहिए। ये कहें कि आशा के अनुरूप उत्पादन फिर हमें नहीं मिल पाता है। तो भूमि सुधार क्यों आवश्यक है अच्छे उत्पादन के लिए, इसी संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे कार्यक्रम में श्री जेसी गुप्ता, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी। तो गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको।
4: नमस्कार।
3: हम जानना चाहेंगे कि अच्छे उत्पादन के लिए भूमि का सुधार क्यों आवश्यक है।
4: देखिए किसान भाइयों, जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं तो हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि जिस भूमि या मिट्टी में हम फसल उत्पादन ले रहे हैं वह मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी के प्रकार क्या हैं। इसको हमें जानने के लिए मिट्टी परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी परीक्षण में एक मान होता है जिसे हम पीएच मान कहते हैं, और पीएच मान से ही मिट्टी की सारी जो भी उसकी प्रकृति है उसके बारे में हमें पता चलता है। अगर पीएच मान इसका मिट्टी का 7.2 के आसपास है तो ऐसी मिट्टी उदासीन मिट्टी कहलाती हैं, और ये 6.6 से लगा करके 7.4 4 तक की मिट्टी, ये हमारी जमीन की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और बहुत अच्छी होती है और सभी फसलों को इसका इसमें उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि धीरे धीरे हमारे खेतों की मिट्टी अम्लीय होती जा रही है, कुछ मिट्टी लवणीय होती जा रही है, कुछ मिट्टी क्षारीय होती जा रही है, जिसे हम ऊसर जमीन कहते हैं। ये जो मिट्टी की प्रकृति है, जो बदलाव होते हैं इसमें, इनमें कई महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण ये बदलाव हो जाते हैं। जैसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना, खेत का पानी खेत में भर जाना और काफ़ी दिनों तक भरे रहना, या नहर के किनारे के खेत होना, या खेत के पानी बरसात के पानी उसमें निकल जाना और उसमें मिट्टी का कटाव हो जाना, तो खेत की मिट्टी खेत से बाहर चली जाए, तो उसमें सारे जितने तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, ये सारे तत्व भी बह के चले जाते हैं, तो हमारी मिट्टी की जो प्रकृति है वह बदल जाती है।
3: अब बात आती है कि मिट्टी हमारी अच्छी बनी रहे, उसकी उर्वरता शक्ति ठीक रहे, इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए?
4: देखिए किसान भाइयों, हमारी जो मिट्टी है और जो जिसमें हम अपनी फसल का अधिक से अधिक उत्पादन लेते हैं, वह भूमि 4 प्रकार की होती है। उदासीन भूमि, जिसमें हम खेती करते हैं, अम्लीय भूमि, जिसका पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है, लवणीय भूमि, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.5 तक चला जाता है, और क्षारीय भूमि, जिसका पीएच मान 8.5 से ऊपर चला जाता है। ऐसी भूमि जो हैं, ये 4 प्रकार की भूमि होती हैं, इन भूमियों का हमें सुधार उसकी प्रकृति के अनुसार करना होता है। इसमें सुधार के लिए 3 विधियां मुख्य रूप से काम में आती हैं। इन 3 विधियों में जो पहली विधि है वो फिजिकल एवं जल तकनीकी द्वारा करते हैं, दूसरी रासायनिक विधि होती है, इसके रसायनों के द्वारा भूमि का सुधार किया जा सकता है, तीसरी विधि जैविक विधि होती है, जिसमें हम जैविक हरी खाद और आपका वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और सड़ी हुई गोबर की खाद आदि डाल करके ठीक करते हैं। जैसे अम्लीय भूमि है तो 30 से 40 क्विंटल चूने का प्रयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें हमें एक साथ 30 से 40 क्विंटल चूना न डाल करके हमें 4-5 साल में 4-4, 5-5 क्विंटल चूना उसमें मिट्टी में बुवाई से पहले, बरसात के पहले डाल करके, और हमें उस मिट्टी का सुधार करना चाहिए। जब हम मिट्टी परीक्षण के बाद देख लें कि हमारा जो पीएच है वो 7 के आसपास आ गया है, तो चूने की मात्रा उसमें बंद कर दें। इसी प्रकार हम 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की मान से भी उसमें डाल करके और अच्छा उत्पादन ऐसी भूमि में ले सकते। लवणीय भूमि जो होती हैं, लवणीय भूमि में उसका सुधार करने के लिए इसमें 15% से कम विनिमेय सोडियम की मात्रा अगर हो जाती है तो ऐसी भूमि लवणीय हो जाती हैं, तो हमारी जो फसलों की उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। इनको सुधारने के लिए हमको हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। हरी खाद में लोबिया, ढेंचा, सनबीजा, उड़द, मूंग, ग्वार आदि फसलों को जून के आखिरी सप्ताह में या बरसात शुरू हो जाए तब इसकी बुवाई कर देना चाहिए, और जब फसल ये 50 से 60 दिन की हो जाए तब इसकी हैरो के द्वारा, इसकी खेत में इसको हैरो के द्वारा काट करके मिला देना चाहिए। 50-60 दिन में इसका मिलाना आवश्यक इसलिए है कि इसमें जब फूल आने लगते हैं तो इसकी जो शक्ति है उधर चली जाती है, तो हमें उसका भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए 50-60 दिन के अंतर से इसकी हैरो से कटिंग करके खेत में अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। तो हरी खाद अगर 3-4 साल तक लगातार किसान भाई खेतों में, जिन जो खेत खराब हैं उनमें अगर करते हैं, तो वो धीरे धीरे जो खेत हैं वो अच्छे होते जाएंगे और उनकी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वो जो हमारी फसलों की उत्पादन क्षमता कम हो गई थी वो टिकाऊ हो जाएगी और धीरे धीरे उनमें अधिक से अधिक किसान भाइयों को उत्पादन मिलने लग जाएगा। इसलिए हरी खाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तत्व हम ऊपर से खेतों में देना चाहते हैं वो इतने आसान नहीं हैं और कठिन विधियां हैं, जबकि हरी खाद से हम सारे तत्वों को खेतों में दे सकते हैं और ये बहुत ही आसान विधि है। इसके द्वारा हमारी जो ज़मीन है उसकी कार्बनिक मात्रा भी बहुत अच्छे से बढ़ती है और उसमें सारे तत्व जैसे कॉपर, मोलिब्डिनम, बोरोन, ये सारे तत्वों की पूर्ति भी उसमें आसानी से हो जाती है। इसलिए हरी खाद से किसान भाई अपनी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है उसे फिर दोबारा पूरी कर सकते हैं।
3: अच्छा गुप्ता जी, ये तो बताओ कि कैसे पता चलता है कि मिट्टी खराब हो रही है?
4: मिट्टी जब खराब होने लगती है तो उसमें जब हम जो कोई फसल बोते हैं तो वो फसल या तो छोटी रह जाती है या पीली पड़ने लगती है।
3: गुप्ता जी, ये तो बताओ कि मिट्टी की जांच कराने से क्या कुछ जानकारी सामने आती है?
4: मिट्टी की जांच कराने से किसान भाइयों उसमें सारे तत्वों की मौजूदगी पता चलती है और उसके हिसाब से हमें उर्वरकों की जो मात्रा है उसको निर्धारण करके और हमें खेत में डालना होता है।
3: तो कृषि विज्ञान केंद्र में ये सुविधा है?
4: हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र में ये सुविधा है, मिट्टी परीक्षण की सुविधा है और कृषि विभाग में भी आजकल हर ब्लॉक लेवल पर भी एक मिट्टी परीक्षण की लैब बन गई है, वहाँ भी किसान भाइयों की निःशुल्क जो है मिट्टी परीक्षण किया जाता है, जबकि हमारे केंद्र पर कुछ एक फीस लेकर के और मिट्टी परीक्षण किया जाता है।
3: अच्छा, ये सलाह दी जाती किसानों को कि मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए हर साल ग्रीष्मकालीन जुताई करते रहें।
4: ये बहुत ही ज़रूरी है, जैसे ही आपकी रबी की फसल कटती है उसके तुरंत बाद हमें गहरी जुताई करना चाहिए और 3 साल में मिट्टी पलटने वाले हल से मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से उसकी जुताई करनी चाहिए, खेतों की
3: गहरी जुताई
4: करनी चाहिए, जिससे कि उसमें जो खरपतवार होते हैं उनके जो बीज होते हैं, जो कीट होते हैं, कीट के अंडे बच्चे या पीपा लार्वा जो रहते हैं वो, और जो बीमारियां होती हैं उनके जो फफूंद होती है वो सब धूप की तेज गर्मी से ख़त्म हो जाते हैं और हमारी जो अगली फसल है वो अच्छी होती है। और जब बरसात का पानी गिरता है तो उसमें जल धारण की जो क्षमता है वो हमारी ज़मीन की बढ़ जाती है, इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई बहुत ही आवश्यक है।
3: और हवा का आवागमन भी सही रहता है?
4: हवा का आवागमन भी ज़मीन में जुताई से इसलिए बहुत अच्छा होता है कि उसमें छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं ज़मीन के अंदर डेलों में, और उनसे हमारी जो वातावरण में हवा है जिसमें ऑक्सीजन है, नत्रजन है, ये इसका आदान प्रदान ज़मीन में अच्छी तरह से होता है तो उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ती है।
3: जी अच्छा, वैज्ञानिकों की ये सलाह है कि अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जैव उर्वरक का प्रयोग करें तो इससे भूमि खराब भी नहीं होती है और इसकी उर्वरता बढ़ती है, इसके बारे में?
4: भूमि में अगर हम कुछ न कुछ जीवामृत, केंचुआ की खाद या हमारी जो सड़ी हुई गोबर की खाद या हम हरी खाद हर साल अगर खेत में देते हैं तो हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही अच्छी रहती है और उसमें हमें लगातार एक समान बराबर उत्पादन प्राप्त होता है और हमारी उपज में कोई कमी नहीं रही। इसलिए किसान भाई आपसे ये हमारा अनुरोध है कि आप खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ाएं और जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनका संतुलित प्रयोग करें, कोई भी उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग न करें, जैसे यूरिया है, यूरिया का बहुत अधिक उपयोग न करें।
3: तो श्री जेसी गुप्ता, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि अधिक उत्पादन के लिए भूमि का सुधार क्यों ज़रूरी है, ये कैसे संभव है और क्या कुछ विधियां अपनाना चाहिए ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति ठीक बनी रहे और हमें अच्छा से अच्छा उत्पादन मिले। आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भैया अब अपन सुन रहे थे जो भेंट वार्ता, जाको विषय है तो अधिक उत्पादन हेतु भूमि का सुधार कैसे करें, जाकी जानकारी दे रहे थे श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी और उनसे बातचीत करी थी अपने भैया एस एस चौधरी जी ने। तो भैया आओ जा जानकारी को सुन के हमारे भैया जरूर लाभ लेवेंगे। और भैया देखो हमने भी आपसे भूमि के बारे में बात करी थी है ना, और आपसे हमने चर्चा में यही कही थी कि जब भी हमें ऐसो लगे तो भैया आओ अपन अपनी जमीन को मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं, क्योंकि मिट्टी परीक्षण के बाद ही अपन को पतो चलत है कि जा में नाइट्रोजन की कमी है कि फास्फोरस की कमी है, कौन से पोषक तत्वन की कमी है, जिनको अपन वो ही डाल के अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। और भैया जहाँ तक है वहाँ तक हम देसी खाद को उपयोग करें, जैविक खाद को उपयोग करें, क्योंकि भैया ये सब चीज़ें हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, मजबूत करत हैं और भूमि की जब उर्वरा शक्ति बढ़त है तो भैया उत्पादन भी अच्छो होत है ना। तो भैया अब आप समझ गए होगे कि हम आपसे का के वो चाह रहे हैं। तो भैया देखो अब जो घड़ी की सुई है बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही कि हम आपसे बतियाएँ, क्योंकि भैया देखो समय में बंधे भए हैं, तो फिर हम अपने चौपाल कार्यक्रम से आज्ञा लेते हैं। तो सब भैया बहनों को धर्मों की राम राम, जय जवान।

0: प्रमुख निर्णयों पर। हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: लक्ष्मी, सार्थक पीडीएस योजना को दो अलग अलग योजनाओं को मिलाकर के एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कह सकते हैं कि इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें एक बड़े सुधार की तरह लाए जाने की कोशिश की गई है। तो इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय है और जो भी जवाबदेही होती है, जो भी व्यवस्था होती है, उस पर कैसा असर पड़ेगा?
1: इस स्कीम में जो मेन जो कंपोनेंट है, जो स्टेट एजेंसीज जो फूड ग्रेन्स वितरण करने में लगे हैं, उसमें जो उनको दिक्कत आती थी वो जो कॉस्ट लगती थी, जो एक स्टेट से, जैसे सेंटर से स्टेट तक जाता है फूड ग्रेन्स, वहां से फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और पीडीएस या राशन शॉप तक पहुंचाने का काम हर एक स्टेट का जवाबदारी है। वहां पे उनको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता था, अभी उससे वो उठा नहीं पा रहे थे। इस स्कीम के तहत वो वाला जो कॉस्ट, जो भी सपोर्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इससे उनका थोड़ा सा पीडीएस में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी इशू है जो डीलर्स का है। डीलर्स का जो रेम्यूनरेशन बहुत सालों से स्टैटिक था एंड वो अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। इससे क्या है कि डीलर्स को भी वो शॉप्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है, ये तीन जो है जो अडॉप्शन है उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंट वे और एफिशिएंसी बढ़ेगा।
0: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है।
2: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है। तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
1: तो इसके लिए जो रियल टाइम बेनिफिशियरी डेटाबेस है, जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है, वो जो राइटफुल बेनिफिशरीज ने, वो वीड आउट हो जाएगा, उनको निकाल देंगे। उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो। एंड जो इरेगुलरिटीज जो होते थे, पैटर्न को वो डिटेक्ट करना और होस्ट डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे, वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी, और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे तो उसमें ज्यादातर ये खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता था उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें बचत होगी।
0: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत। तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
2: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए AI इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को QR कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका GPS टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, PDS को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
0: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि AI, मशीन लर्निंग, NLP और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है, या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
1: देखिए, ये जो ग्रीवियंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा AI असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल AI ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्टर रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो NLP टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करे, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज को, हाँ उनका जो कंप्लेंट्स है वो कोई समझ रहे है, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते वो बेनिफिशरीज है, ज्यादातर अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
0: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं, तो इस मिशन में अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
1: देखिए, चैलेंजेस ज्यादातर जो है, रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और इसके वजह से दिक्कत बहुत होता था कि वहां तक पहुंचाना। अब ये GPS टैग्ड व्हीकल्स जो इस स्कीम के तहत होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा
0: जी।
1: यहाँ से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, वो रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है, या पता, यू कैन मॉनिटर GPS टैग व्हीकल्स कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का। और रूट ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे होगा AI algorithms, जो AI यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है, तो वो वाला भी एल्गोरिथम के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से सीजन में हम ज्यादातर लोगों का जो है ज्यादा ऑफ टेक है राशन में। कई बार लोग जल्दी ले लेते हैं पहले हफ्ते में, क्योंकि वो उनका टाइम स्पैन होता है, एक महीने में राशन कभी भी आप महीने के स्टार्टिंग में उठा सकते हैं या आखिरी में भी उठा सकते, कई बार त्योहार के टाइम पे वो फर्स्ट वीक में उठा सकते, कई बार डीलर के पास उतना स्टॉक नहीं होता, उसके वजह से भी बेनिफिशरीज को टाइम से मिलना मुश्किल होता, तो टेक्नोलॉजी के वजह से वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से वीक या कौन से महीने में स्टॉक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह से प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर QR कोडेड के वजह से वो टैम्पर कोई कर ही नहीं सकते, जो जिस फेयर प्राइस शॉप को जो राशन शॉप के लिए जाना है वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला QR कोडेड कौन से राशन के दुकान में पहुंचा है और वो ट्रैक भी कर सकते हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ना, वेयरहाउस से लेके राशन शॉप की दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया, कहाँ पे रुका, कहीं पे दिक्कत हुई, सब कुछ वो ट्रैक कर सकते।
0: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना NFSA के तहत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपर्ली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट।
0: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और EPOS मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक PDS की बात की गई, और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक PDS ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
1: क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत ये इंप्लीमेंट हो ही रहा है, तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहाँ पे आप राशन उठाना चाहिए और उठाने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो। इस तरह का प्रोविजन अभी है विच इज गुड। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक ही राशन होगा और कहीं पे भी वो ले सकते हैं।
0: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं बिल्कुल ना हो, वो और भी अच्छे से काम करें ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल हुई है?
1: हाँ, इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते हैं सोच समझ के करते हैं, और जहां तक मैंने PDS इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है
0: जी,
1: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके और इवन वेयर हाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो

0: सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा।
1: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। लक्ष्मी जी, सार्थक पीडीएस को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
0: देखिए, इसमें तो डीलर्स का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा, वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में वो अब मन लगा के वो इम्प्लीमेंट करें। एंड दूसरा, जो स्टेट कॉस्ट इनकर्ड था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इन अ मच बेटर वे।
1: जी लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। संगम फिल्म से ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे हुए बोल हैं, जिन्हें संगीत में पिरोया है शंकर

अगला गीत सुनिए सदमा फिल्म से सुरेश वाडकर की आवाज़ है, गुलजार के लिखे हुए बोल, जिन्हें संगीत में पिरोया है इलैया राजा ने।

आशा भोसले की ये खूबसूरत आवाज़ में अगला गीत सुनिए, जॉनी मेरा नाम फिल्म से, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और

ये फूल गुलाबी, इनके रंगत क्या।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अगला गीत सुनिए कुर्बानी फिल्म से कंचन मनहार और आनंद की आवाज़ है। इंदिवर के लिखे हुए बोल हैं जिन्हें संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, मिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल

0: जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच

0: मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat waves sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain

0: ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं तनवीरुल फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिक के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि AI की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज GPS के जरिए ट्रैकिंग और QR कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम PDS के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस समत में PDS को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये अकदाम PDS के तहत फराहमी, लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निजाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।

0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े एआई पर मबनी मॉड्यूल होंगे जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक एआई की क्यादत वाली रियल टाइम पीडीएस मुस्तफिदीन का निजाम है, आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई जहानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम एआई पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81 करोड़ 35 लाख अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा पीडीएस स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए शुमाल मशरिक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और ये भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून

1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आजाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी अख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें चार दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरिक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर आजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए
25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेस के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था

0: कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन, और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है, और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है, और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे, और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है, अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990

0: के दशक में भी 92 के बाद, खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए सीए जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात, किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा, और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, बस सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
0: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
0: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेंट उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत

0: का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का, एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? और बाउंड्री क्रॉस करके जाते तो भी भारत उनको स्वीकार करता है? ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको रिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिये, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है नाटक उपेक्षित, जिसके लेखक हैं घनश्याम सिंह तोमर और प्रस्तुत करता है जितेंद्र स्वरूप राजन।
1: प्रस्तुत है वृद्ध जनों की रहन सहन की समस्या पर केंद्रित नाटक उपेक्षित, लेखक घनश्याम सिंह तोमर, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: महेश, जरा देखो तो कौन साहब है।
1: जी मालिक।
2: क्या प्रसाद साहब हैं?
1: जी हाँ, अंदर हैं।
2: उनसे बोलो जोशी जी आए हैं।
1: मालिक, कौनो जोशी जी आए हैं?
0: अरे भाई, उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दो, मैं अभी आता हूँ।
1: जी आप बैठिए, मालिक अभी आते हैं।
0: नमस्कार जोशी जी।
2: नमस्कार, नमस्कार। अरे प्रसाद जी, आप तो बहुत कमजोर दिख रहे हैं, ये क्या हालत बना ली है आपने?
0: शारदा के जाने के बाद अब किसी भी काम में मन नहीं लगता।
2: ओहो,
0: ना तो कोई बात अच्छी लगती है, ना ही कुछ करने का मन होता है।
2: सही,
0: सच पूछिए तो अब जीवन में इतनी रिक्तता आ गई है कि जीने का मन ही नहीं करता। शारदा के देहांत के बाद बच्चे और बहुएं आई थी।
2: अच्छा।
0: कुछ दिन उनके रहने से मन बहला रहा।
2: हाँ।
0: अब सब चले गए तो घर काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है।
2: क्या बात करते हैं प्रसाद जी, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो आश्चर्य होता है। मेरे विचार में पहले तो आप कुछ दिन अपने बच्चों के यहाँ हो आइए। 3 बच्चे हैं आपके, बहू और बेटों में आपका मन बहल जाएगा, पोते पोतियों की देखभाल करने में समय गुजरेगा। प्रसाद जी, बच्चे कहाँ कहाँ हैं आपके?
0: बड़ा शैलेंद्र जो है वो खंडवा में है।
2: अच्छा।
0: दूसरा पटना में।
2: हम्म।
0: और तीसरा धर्मेंद्र जबलपुर में।
2: बिल्कुल।
0: प्रोफेसर है।
2: हाँ, तो अब आप अपना कार्यक्रम बना लीजिए और उस पर अमल कर डालिए।
0: ऐसा ही करूंगा, करना ही पड़ेगा, घर छोड़ने का मन बनाना ही पड़ेगा। इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, उन्हें भुलाना ही पड़ेगा।
2: देखिए प्रसाद जी, भावुकता एक सीमा तक तो ठीक होती है, किंतु उस सीमा के बाद तो वो एक अभिशाप बन जाती है, जिसके नतीजे में आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है, वही कष्ट जो आप अब उठा रहे हैं।
0: आपका कहना कुछ हद ठीक है, लेकिन स्वभाव और प्रवृत्ति को बदलना आसान नहीं होता। अच्छा बताइए, ठंडा लेंगे या गरम? बातों में ये सब भूल ही गया था।
2: प्रसाद जी
0: क्षमा कर,
2: अतिथि से पूछा नहीं जाता, जो अच्छा हो मंगवा लीजिए। मैं भी कॉलेज से चला आ रहा हूँ, सोचा रास्ते में आपसे मिलता चलूँ, बहुत दिनों से आपसे भेंट नहीं हुई थी।
0: अच्छा हुआ आप आ गए, आप जैसे मित्रों के मिलने से बड़ा बल मिलता है।
1: मालिक, ये लीजिए।
0: हाँ, हाँ, रखो रखो,
1: यहाँ रख दें।
0: हाँ लीजिए, जलपान कीजिए।
2: ये नाश्ता शायद महेश ने बनाया है।
0: अब तो महेश ही ये सब घर संभाल रहा है।
2: ये आपके यहाँ कब से काम कर रहा है?
0: यही कोई 2-3 महीने से।
2: क्या इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है?
0: क्या मतलब?
2: यही कि आप जानते हैं ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसका और कौन कौन है, पहले क्या करता था, अगर पहले कहीं और काम करता था तो काम छोड़ने की वजह क्या है।
0: क्या ये सब जानने की जरूरत है? क्या
2: है? जरूरत है, इस घर में आप अकेले रहते हैं, ऐसे में कोई भी कुछ कर सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए।
0: सावधान रहने के लिए अब रही क्या?
2: आहा, फिर वही बात निराशा की। प्रसाद जी, मैं मानता हूँ आपको भाभी के देहांत से बहुत बड़ा आघात पहुँचा है, परंतु
0: किंतु परंतु कुछ नहीं जोशी जी, अब तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ करना है, अपने पोते पोतियों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। आप जैसे बुद्धिजीवी यदि जीवन के अंधेरे पहलू को लेकर मौन साध लें, निष्क्रिय हो जाएं, तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी किसके अनुभवों और मार्गदर्शन का सहारा लेगी, बताइए? ईश्वर ने हमें मनुष्य यौनी इसलिए तो नहीं दी कि हम उसे व्यर्थ गंवा दें? निराशा छोड़िए, विवेक को जगाइए, कुछ कीजिए जिससे मानवता और देश का भला हो। आपसे बहुत सी आशाएं हैं।
0: क्या ये जरूरी है कि मैं इसके बारे में मालूमत की जाए?
2: जी हाँ, ये आवश्यक है। सरकार ने भी इस बारे में सजग रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। किसी को भी नौकर रखने पर उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। मुझे उसका पता दीजिए। मेरे एक मित्र मिस्टर पेंगे पुलिस अधिकारी हैं, वो इसके बारे में पूरी मालूमात करवा लेंगे।
0: अगर ये इतना जरूरी है तो पता मैं दिए देता हूँ। ये लीजिए।
2: लाइए, धन्यवाद। अच्छा, अब जाने की इजाजत दीजिए।
0: अच्छी बात है, फिर कब आ रहे हैं?
2: जल्दी आऊंगा। इस बीच आप अपने बच्चों के पास जाने का प्रोग्राम बना लें और मुझे बताएं।
0: बना लूंगा और आपको सूचना भी दे दूंगा।
2: आप मुझे फोन पर बता दें, मैं उसी दिन आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो प्रसाद जी। हाँ, मैं जोशी बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। कुछ प्रोग्राम बनाया आपने जी? हाँ। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो शाम को तो आप घर ही पर भी रहेंगे ना? जी हाँ, मैं आ जाऊँगा। मैंने भी अपने जाने का प्रोग्राम बना लिया है। कुछ दिन मैं भी अपने बच्चों के साथ जाकर रहूँगा। अच्छा, बाय।
1: जोशी जी आ जाइए, दरवाजा खुला है।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए।
0: तो आपने बच्चों के पास जाने का मन बना लिया?
1: जी हाँ, अब आपकी सलाह पर कुछ न कुछ तो करना ही था, लेकिन एक बात की चिंता है।
0: क्या?
1: इतना बड़ा घर सुना छोड़कर कैसे चला
0: अरे
1: जाऊंगा?
0: महेश के भरोसे मैंने उसके बारे में पूरा पता लगा लिया है। वो मंदसौर का रहने वाला है। ईमानदार और सीधा सच्चा आदमी है। उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो और उसका परिवार वहाँ सिलेट कारखाने में काम करते थे। उसके बच्चे की मृत्यु हो जाने के बाद वो मंदसौर से यहाँ चला आया। पहले एक होटल में काम करता था, लेकिन होटल का वातावरण उसे रास नहीं आया, इसलिए उसने होटल का काम छोड़ दिया। आपने उसको नौकर रख लिया, अब यही काम कर रहा है।
1: ठीक है, अब ये जिम्मेदारी सौंप कर एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
0: वैसे जोखिम की चीजें आप बैंक के लाकर में रख दें, घर में कमरे में लॉक लगा दें, एक कमरा उसके लिए छोड़ दें। मैं समझता हूँ महेश आपको धोखा नहीं देगा।
1: ठीक है, मैं 2-1 दिन में ही जाने का सोच रहा हूँ।
0: इस यात्रा से आपको कुछ ताजगी मिलेगी और फिर आबहवा भी बदल जाएगी। इस स्थान बदलने से आपका मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा।
1: जोशी जी, जहाँ तक वातावरण का सवाल है, वातावरण तो सब जगह एक सा है। वही तनाव, वही घुटन, वही जिंदगी, पैसे के लिए दौड़ धूप, कुछ और अच्छा पाने की लालसा। हाँ, आबोहवा जरूर बदल जाएगी, जिसका असर स्वभाव और स्वास्थ्य पर पड़ सकता
0: जी
1: है।
0: हाँ, मेरा मतलब वातावरण से जलवायु बदलने का ही था। आपने शब्द पकड़ लिया और अपने
1: जी
0: बौद्धिक होने का सबूत दे ही दिया। इन दिनों कुछ लिखा हो तो सुनाइए।
1: लिखा तो है, अब खाली समय में यही काम रह गया। शारदा थी तो उनसे बातचीत में समय कट जाता
0: हाँ,
1: था, अब तो केवल पढ़ना और लिखना ही रह गया है। जो कुछ लिखा है उसे फिर आप निराशावादी लेखन कहने लगेंगे।
0: फिर भी सुनाइए तो। वो
1: लिखा तो बहुत कुछ है पर सुनाने का मन नहीं होता, इसलिए कि मैं तो दुखी हूं। दूसरों को उसे सुनाकर दुखी क्यों करूं?
0: फिर वही बात प्रसाद जी, आप सुनाइए। यदि मनुष्य को दुख का अनुभव नहीं हो तो वो सुख के स्वरूप की न तो कल्पना कर सकता है और न उसे भोग सकता है। कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही हमें सहज और सरल स्थिति में जो खुशी आनंद मिलता है उसका उपयोग हम ज़्यादा मज़ा लेकर करते हैं। आपने जो भी लिखा है सुनाइए, वो ज़रूर सार्थक होगा।
1: अब आपका आग्रह है तो कुछ सुनाई देता हूं।
0: हाँ ज़रूर
1: सुनिए,
0: जी।
1: याद दुख की तो दुख देती है,
0: याद दुख की तो दुख देती है। वाह।
1: याद दुख की तो दुख देती है,
0: हाँ हाँ
1: याद सुख की भी दुख
0: हाय
1: देती
0: हाय,
1: है।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह।
1: कितनी अच्छी ये बात हो जाती,
0: हाँ
1: काश के याददाश्त खो जाती।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आपने अपनी बात बड़े ढंग से कही है। हालांकि आपकी निजी अनुभूति है, किंतु इसमें एक दर्शन भी है, एक वास्तविकता है, हकीकत जिसे नकारा नहीं जा सकता। हाँ कुछ और सुनाइए
1: जोशी जी,
0: जी।
1: कुछ पंक्तियां और हैं, जिंदगी एक हसी परिंदा है।
0: हाँ, जिंदगी एक हसी परिंदा है। वाह,
1: जिंदगी
0: एक हसी परिंदा है।
1: एक हसी परिंदा है। समय की शाख पर नजाकत से
0: हाँ
1: रुक के कुछ देर चहचहाता है।
0: क्या बात है,
1: झूलती शाख छोड़।
0: क्या, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। जिंदगी और उसके बाद उसके वजूद के आभास की इससे और अच्छी तस्वीर शब्दों में नहीं पेश की जा सकती। पई प्रसाद जी, मान गए, आपके कलम में बहुत जोर है, बड़ी ताकत है।
1: जोशी जी, मैं अगर गलत नहीं सोचता तो हमारे बाद हमारे निशान ही हमारी पहचान बताते हैं।
0: बेशक बेशक प्रसाद जी, तो आप कल जा रहे हैं?
1: हाँ, मैंने अपने पहुंचने का तार भी दे दिया है।

0: हाँ बच्चों, अब जरा फिर से करके दिखाओ। अरे आप, इतनी जल्दी? क्या ऑफिस से छुट्टी हो गई?
1: अरे नहीं मालती, मुझे जल्दी आना पड़ा।
0: सब कुशल तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है?
1: हाँ तबीयत भी ठीक है।
0: ओहो, तो फिर क्या बात है?
1: अरे पहले अपना डांस क्लास बंद करो, फिर बतलाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोग आज जाइए। हाँ कल जल्दी आ जाना। हाँ आप बताइए क्या बात है?
1: वो बाबूजी का तार आया है।
0: सब ठीक तो है? अरे अभी तो मम्मी का आघात ही नहीं भूले हैं हम लोग।
1: शुभ शुभ बोलो मालती, बाबूजी अभी आ रहे हैं। मैंने सोचा तुमको पहले बता दूं और उसके बाद उनको लेने स्टेशन चला जाऊं।
0: ओहो, फिर मेरी डांस क्लास का क्या होगा? और फिर उनके ठहराने के लिए
1: अरे
0: भी तो।
1: उन्हें बच्चों वाले कमरे में ठहरा देंगे।
0: और फिर बच्चे?
1: वो कुछ दिन जब तक बाबूजी रहेंगे अपने कमरे में रह लेंगे।
0: ओहो, उनकी पढ़ाई का क्या होगा?
1: ओफो, वो भी अपने कमरे में उन्हें करना पड़ेगी। ऐसा करो, डांस क्लास की कुछ दिन छुट्टी कर दो और बच्चों का सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर दो।
0: आप भी कमाल करते हैं। अरे डांस क्लास बंद कर देने से उतने दिन के पैसे नहीं काट लेंगे वो लोग?
1: अब क्या किया जा सकता है, यही करना पड़ेगा।
0: ओहो, अब देखो बच्चों को भी कितनी तकलीफ हो जाएगी ना।
1: भाई वो तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी।
0: लेकिन अब ये कब तक?
1: ओफो, वो 2-4 दिन रहकर चले जाएंगे, तब तक तो हम ये सब कर सकते हैं ना। जल्दी करो, वक्त इन सब बातों का नहीं है, गाड़ी का समय हो रहा है, मुझे स्टेशन जाना है।
0: ये बाबा आ रहे हैं,
2: बाबा आ रहे हैं। ये
0: वो हमें कितना प्यार करते हैं ना,
2: वह हमें अच्छे अच्छे चीजें खाने के लिए भिड़ा कर देते हैं। याद है जब हम भोपाल गए थे?
0: हाँ याद है, जब बेचारी दादी नहीं रही।
3: अरे चुप रहो तुम लोग, तुम्हें कुछ मालूम भी है उनके आने से हम लोगों को कितनी तकलीफ हो जाएगी?
0: क्यों मम्मी?
3: क्योंकि बाबूजी जो है ना, वो तुम्हारे कमरे में रहेंगे और तुम दोनों को हम लोगों के कमरे में आना पड़ेगा, वहीं पढ़ना और वहीं सोना, समझे?
1: अरे अब ये सब बातें बंद करो और कमरा ठीक कर दो, मैं स्टेशन जाता हूँ।
3: ठीक है।
4: अरे भाई हनी, आशु कहाँ हो?
0: ओहो, लगता है बाबूजी आ ही गए।
1: बाबूजी, मैं स्टेशन आ ही रहा था, तार अभी अभी मिला है।
4: हाँ बेटे, तार चलने के पहले ही दे दिया था।
5: बाबा आप आ गए,
2: हम आप ही का रास्ता देख रहे थे।
4: अच्छा, और क्या सोच रहे थे?
2: और बाबा, और हम सोच रहे थे कि आप हमारे लिए जरूर कुछ लाएंगे।
5: और बाबा मेरे लिए भी।
3: अरे अब बाबा को बैठने तो दो, जरा चैन तो लेने दो। हटो तुम दोनों, जरा बाबूजी के चरण स्पर्श तो कर लूं।
4: सौभाग्यवती रहो, खूब फलो फूलो।
3: बाबूजी अब आप हाथ मुंह धो लीजिए।
4: हाँ बेटी, बाथरूम में पानी तो होगा?
3: हाँ बाबूजी, हाथ मुंह धोने लायक तो मिल ही जाएगा। आज जरा नल जल्दी चले गए थे ना, इसलिए पानी की कुछ कमी है। और वैसे भी यहाँ तो अक्सर नल थोड़े से समय के लिए आते हैं, इसलिए पानी की कमी तो बनी ही रहती है बाबूजी। इस शहर में तो बस कभी पानी की कमी, तो कभी बिजली नदारत, तो कभी गैस की शॉर्टेज, एक ना एक मुसीबत तो झेलनी ही पड़ती है। और कभी कभी तो बाबूजी गैस नहीं होने से खाना बाहर से लाकर खाना पड़ता है। बड़ी मुसीबत है यहाँ तो।
4: बेटी, हमें संतोष तब मिलता है जब हम अपने से नीचे के वर्ग को देखें, फिर मन करता है कि ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें ऐसी बहुत सी चीजें दी हैं जो औरों को नहीं दी।
3: हाँ बाबूजी, वो तो ठीक है, मगर अब ये सब कुछ कहने में तो आ ही जाता है ना।
1: अरे क्या घर का दुखड़ा लेकर बैठ गई, चाय नाश्ता लाओ। लीजिए बाबूजी ये तौलिया, हाथ में पहुंच लीजिए।
4: आओ बच्चों आओ।

0: हमारे साथ नाश्ता कर लो।
1: नहीं बाबा,
2: हमने अभी खाना खाया है।
1: आप नाश्ता करिए।
0: अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है?
3: हाँ, पढ़ाई तो ठीक है बाबूजी, लेकिन फीस और बस्ते का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।
0: न जाने कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है पढ़ाने का। हमारे जमाने में तो कम सब्जेक्ट होते थे और आधा काम जो है वो जबानी होता था। गिनती, पहाड़े, पौने, सवैया, अधे, सब जबानी और हिसाब फटाफट।
3: बाबूजी, अब तो किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और आए दिन के चंदे और फीस इतना बोझ हो गया है कि उठाना मुश्किल पड़ रहा है। इसकी वजह से घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो गया है बाबूजी।
0: बहू, तुमको भी कुछ करना चाहिए। आजकल एक की कमाई में घर खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है।
4: अब और क्या करूं बाबूजी, मैं बस थोड़ा बहुत डांस क्लासेस चला लेती हूं, 100-200 रुपए वो मिल ही जाते हैं। अब घर के कामों में ही इतनी उलझी रहती हूँ कि कुछ दूसरा करने की फुर्सत ही नहीं मिलती।
0: तुम बेटी कोई क्राफ्ट क्लास ज्वाइन कर लो और फिर सीख करके उससे थोड़ा सा लाभ उठा लो।
4: अब उसके लिए भी तो फीस देनी पड़ेगी ना बाबूजी, वो कहाँ से आएगी?
0: अरे भाई, जब तक तुम प्रशिक्षण लोगी तुम्हें फीस के लिए पैसे हम भेजते रहेंगे।
3: छोड़िए बाबूजी, आप यहाँ आए हैं आराम करने के लिए और गले लगा रहे हैं झंझटें।
4: अच्छा, तो आपको ये झंझट लग रही है? अरे बाबूजी, अपनी मर्जी से कुछ देने की बात कर रहे हैं तो आप बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं जी?
0: ठीक है भाई, तुम लोग विवाद क्यों करते हो? मैं अपनी पेंशन से तुम्हें कुछ भेज दिया करूँगा।
3: अरे चलिए बाबूजी, आराम कर लीजिए, सफर में थक गए होंगे।
0: मैं यहीं पलंग पर लेट जाता हूँ।
5: मैं ऑफिस जा रहा हूँ मालती, तुम बाजार से सब्जी ले आना।
4: अरे आप रुकिए जरा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे मार्केट में छोड़ देना, आप सब्जी ले लूंगी वहीं से।
0: हनी बेटे
1: जी,
0: एक गिलास पानी पिलाओगे?
1: बाबा, मैं आपके लिए क्या लाऊं?
0: अरे भाई, तुम खुद आ जाओ, हम दोनों बातें करेंगे।
1: जी लीजिए बाबा पानी। बाबा, आप हमारे लिए जो लाए हैं वो तो आपने अभी तक दिया ही नहीं।
0: अरे भाई, तुम्हारे लिए हम जीन्स का कपड़ा लाए हैं और आशु के लिए फ्रॉक लाए हैं।
1: कपड़ा? ओ
0: क्यों, क्या हुआ, इतना बुरा मुंह क्यों बना रहे हो?
1: बाबा, 3 महीने तक जीन्स सिलने के लिए भी नहीं डाली जाएगी।
0: क्यों?
1: मम्मी पापा के पास उसके लिए पैसे कहाँ निकलेंगे?
0: क्यों नहीं निकलेंगे?
1: मम्मी पापा कहते हैं कि उनके सब पैसे खर्च हो जाते हैं।
0: किस बात में?
1: अब देखिए ना, हम दोनों की फीस, घर के सामान का खरीदना, क्लब की फीस, ब्यूटी पार्लर का खर्चा, और भी खर्चे हैं बाबा, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं?
0: अच्छा भाई, हम दर्जी के यहाँ चलकर तुम्हारी जींस सिलवा लें।
1: जी।
0: और हमारी आशु बेटी को क्या चाहिए?
6: बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके पैसे खर्च करवाना नहीं चाहती।
0: अच्छा, तो तुम इतनी समझदार कब से हो गई?
6: बाबा, मम्मी कहती हैं पैसे जोड़ जोड़ कर रखने चाहिए, वक्त जरूरत पर काम आते हैं।
0: वो ठीक कहती हैं।
1: बाबा, अब हमें मम्मी पापा के कमरे में रहना पड़ेगा, वहीं पढ़ना पड़ेगा, वहीं सोना पड़ेगा।
0: क्यों?
1: आप आए हैं ना, आपको हमारे कमरे में ठहराएंगे। मम्मी कह रही थी जब 2-4 दिन बाद आप चले जाएंगे तो फिर हम अपने कमरे में रहने लगेंगे।
0: 2-4 दिनों में नहीं बेटे, हम कल ही चले जाएंगे। मैं तुम लोगों को तकलीफ देने नहीं आया हूँ बेटे। अच्छा, अब थोड़ी देर आराम।
4: बाबूजी, सो गए क्या?
0: अरे बेटी, इतनी जल्दी आ गई तुम? और हाँ, कल मुझे जबलपुर जाना है। ये पैसे लो, मेरे लिए रिजर्वेशन करा दो।
3: क्या बात है बाबूजी, अभी आए हैं और अभी जाने की बात करने लगे।
0: अरे भाई, तुम लोगों को देखने का मन था, देख लिया। बच्चों और बहू से मिल लिया, अब थोड़ा सा धर्मेंद्र के पास भी हुआ, उसे भी देख लूं।

0: बेटा धर्मेन।
1: अरे अरे बाबूजी आप, बाबूजी आप, अरे आने की सूचना तो दे दी होती, मैं स्टेशन पर आ जाता। मकान ढूंढने की परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती आपको?
0: अरे नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं। बहू कहाँ है?
1: जी बहू जी, वो डॉक्टर के यहाँ गई है।
0: डॉक्टर के यहाँ?
1: जी
0: क्यों?
1: बाबूजी वो प्रेग्नेंट है ना।
0: धर्मेंद्र
1: जी,
0: तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम्हारे दो दो बच्चियां हैं
1: जी,
0: फिर भी ये सब क्या है? क्या तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं है?
1: है ना बाबूजी, लेकिन वो क्या है बाबूजी, आपकी बहू को एक लड़के की चाह है।
0: क्या पागलपन है, लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। तुम अपनी सास को बुला।
1: जी
0: उसको बुला लो।
1: हाँ।
0: वो यहाँ आकर के तुम लोगों की और बहू की देखभाल करेगी।
1: जी जी
0: हाँ, एक बात और।
1: जी बोलिए बाबूजी।
0: कल मेरा वापस जाने का रिजर्वेशन भी करा दो।
1: जी इतनी जल्दी बाबूजी?
0: तुम लोगों की तकलीफों में एक और तकलीफ बढ़ाना मैं नहीं चाहता।

0: अरे मालिक, प्रणाम। आप बहुत जल्दी आ गए। अरे
1: हाँ महेश, ऑटो से सामान तो उतार ला।
0: जी मालिक।
2: अरे भाई प्रसाद जी, इतनी जल्दी आ गए।
1: हाँ भाई, मगर आप भी तो यहीं दिख रहे हैं, क्या बच्चों के पास नहीं गए?
2: गया था, परंतु मैं उनके यहां फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए तीसरे ही दिन चल दिया। और आप?
1: मैं दूसरे ही दिन
2: क्या हम बूढ़े यूं ही उपेक्षित रहेंगे?
1: लगता है अब यही नियति हो गई है।
2: हाँ, जब तक सांसें हैं तन्हाई झेलनी है।
1: सच में जोशी जी, मन बना लो,
2: हाँ,
1: क्योंकि बहुत दिनों तक रहना होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक उपेक्षित। लेखक थे घनश्याम सिंह तोमर। भाग लेने वाले कलाकार थे के बी सोनी, मकबूल हसन, प्रेम प्रकाश अष्ठाना, राकेश जैमिनी, बद्रुन्निसा, पूनम भार्गव, प्रेरणा थॉमस और अशोक बुलानी। प्रस्तुति सहयोग आनंद सिंह उद्देका था और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: अभी आप घनश्याम सिंह तोमर द्वारा लिखित नाटक उपेक्षित सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आनंद लीजिए पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा गिटार वादन का। राग है रागेश्री।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरा पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात्रि के 11:10:18 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।